0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक रिलेशनशिप का लिटमस टेस्ट क्या होता है, क्या होना चाहिए? दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माय एक्स बॉयफ्रेंड. वो मुझे एक सिंपल सी चीज कहता था, जब तक एक रिलेशनशिप में मजे आ रहे हैं द रिलेशनशिप इज वर्किंग फॉर यू. जैसे ही रिलेशनशिप में हंसना कम रोना ज्यादा हो जाए, द बैलेंस हैज गॉन क्रेजी, यू कैन डंप द पर्सन. एंड ही सेड दैट इवन फॉर हिमसेल्फ, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. आई ब्रोक अप विद हिम टेलिंग हिम यार मजे नहीं आ रहे. एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं. आई वाज लाइक क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है. एंड वी ब्रोक अप. बट द ट्रूथ इज, अगर आपकी जिंदगी में भी रोना ज्यादा और हंसना कम है, you know what to do. और अगर वो करने में आपको कष्ट हो रहा है, why don't you hit me up and we'll talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Milci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, आप तो सर पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर. तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: Mirchi Roshi. Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: आपको पता है ना कि मैं सीक्रेट्स के बारे में क्या कहती हूँ. अगर आपका एक ऐसा सीक्रेट है आपकी जिंदगी में जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कैसी लूजर जिंदगी है भाई.
2: The secret box.
1: And if on the other hand you are a true blue Roshan, तब आपका हर सीक्रेट ऐसा होगा जो पूरे इंडिया को पता होना चाहिए. And if that is the case, feel free to hit me up on Instagram या Facebook. मेरा नाम है मिर्ची रोशे, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. और at this moment, मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछूंगी because you will be my mystery caller. और साथ में है मेरी mystery caller. Hi mystery caller.
3: Hi Roshi.
1: What's up?
3: Things are not very good right now.
1: क्यों, क्या हो गया? ये आपके confession के बारे में है.
3: हाँ, obviously.
1: Yeah, tell me, yes.
3: So, एक shampoo आता है बच्चों का, which says no more tears.
1: हाँ, correct.
3: So I thought let's try it because life में वैसे ही बहुत tears हैं.
1: हाँ, correct.
3: So I used this shampoo and I forgot for some reason to close my eyes.
1: हाँ, correct.
3: And When I used the shampoo, वो shampoo मेरी आँखों में गया और उसके बाद मेरी आँखों से आँसू ही आँसू आते रहे. So this shampoo is not the correct thing for you when you want to stop your tears because आप रोते ही रहोगे. Because of this thing, I couldn't go to my office, I couldn't work only. मेरी आँखें इतनी जल रही थी क्योंकि
1: Bro, आंखे खोल के कौन शैम्पू करता है अपने बाल.
3: वो आई थॉट दैट यू नो सम मैजिक वुड हैपन.
1: आपको सीरियसली रोशे वेकेशन की जरूरत है. एक गहरी सांस लो और इस बार आप आंखें खोल सकते हो क्योंकि आपकी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे.
0: You've been roshified.
1: If I have not told you, then I really love you, mystery caller. Thank you so much for this most amazing, most amusing story. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे relationship confession सुने हैं, लेकिन you want to break up with your shampoo, that's kind of cute. और अगर आप भी ऐसे ही मेरे mystery caller की तरह कोई भी चीज़ confess करना चाहते हो, because आप और किसी को नहीं बता सकते, because you'll end up sounding really stupid, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So go ahead, जानू मानू, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खुशी बाबा की जय।
1: काम डाउन मैं भगजनो, अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में रहो एंड यू आर अ गाय एवरी टाइम योर बेब गोज फॉर अ हेयर ड्रेसिंग अपॉइंटमेंट, ये याद रखना कि अपॉइंटमेंट कब है और कितने बजे, क्योंकि जैसे ही वो अपॉइंटमेंट के बाद आपको मिलेगी, यू डोंट नीड टू नो व्हाट शी इज गॉट डन, ऑल यू हैव टू से इज माय गॉड बेब यू आर लुकिंग स्मैशिंग, और उसे लगेगा कि आप इतने अटेंटिव हो कि एक ट्रिम के बाद भी आपने उसे नोटिस कर लिया। शी विल नॉट रियलाइज दैट दिस इज अ ट्रिक with which you will impress her every single time, no matter how old or new your relationship is. My darling, you're already welcome for this. Aur agar aap aur bhi personalized tips or tricks chahte ho, why don't you hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, do what you need to do. Lekin, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: I have finally realized कि एक perfect relationship कैसा होता है। एक perfect relationship आपके घर का सबसे पुराना scooter है। कभी आप उस पर बैठकर सवार हो कि enjoyment करेंगे, कभी आपको स्कूटर को धक्का लगाना पड़ेगा। You are understanding what I'm saying? अगर आप half and half नहीं करेंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि relationship में कुछ नहीं करना, I just have to sit back and enjoy myself, और partner सारा काम करेगा, ये तो आपके घर का स्कूटर भी नहीं करता है यार, पार्टनर कैसे करेगा। वंस यू फिगर दिस आउट ना, जिंदगी इतनी आसान हो जाती है। और उससे भी ज्यादा अगर आप लेजी इंसान है कि हाफ एंड हाफ वर्क इज टू मच रोसी, तो मेरी तरह सिंगल हो जाओ, काम ही नहीं करना पड़ेगा। जो भी काम है अपने लिए करोगे, उससे ज्यादा एक और चीज नहीं। एंड इफ यू लव द लाइफ ऑफ सिंगलडम, वाई डोंट यू हिट मी अप, ताकि हम अपने नोट्स कंपेयर कर सकें और अपने फेलो कपल्ड लोगों का मजाक उड़ा सकें। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड डार्लिंग, हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पक्का।
5: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपकी जिंदगी की भसड़े खत्म नहीं होती हैं और उन्हें सॉल्व करने के मेरे सोल्यूशंस खत्म नहीं होते हैं. सो फॉर ऑल दोज पीपल आउट देयर, स्पेशली ऑल द गाइज जिन्होंने मुझे इतने सारे इनसेसेंट डीएम्स लिखकर भेजे हैं कि यार हम भी अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, हम भी क्यूट दिखना चाहते हैं, हमारी डेट्स भी अच्छी हों, आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए मेरे साथ बैक अगेन ऑन द शो इज डाइटिशियन शिल्पा चावला. हाय शिल्पा.
3: हाय रोशि.
2: थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो शिल्पा. एंड मेरा आपके लिए आज का सवाल है, फॉर ऑल दोज गाइज जो लीन हैं और बल्क अप करना चाहते हैं लेकिन जिम नहीं जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लुक इक्वली अट्रैक्टिव, वो क्या कर सकते हैं थ्रू देयर डाइट टू काइंड ऑफ बल्क अप?
3: तो इफ समबडी इज लीन, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई ओवरवेट है और बल्क करना चाहता है, पहले तो उसको अपने आइडियल वेट पे आना पड़ेगा बल्किंग स्टार्ट करने से पहले. अच्छा, और बिना एक्सरसाइज के, बिना जिमिंग के बल्किंग थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि उससे शेप नहीं आएगी एंड यू विल नॉट लुक द वे यू वॉन्ट टू लुक इफ यू विल नॉट डू डंबल एंड हैवी वेट एक्सरसाइज. बट एज पर दी डाइट इज कंसर्न्ड, हमें हर मील में 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना है. प्रोटीन आपके एवरी मील में होना चाहिए, हर मील में होना चाहिए. इससे क्या होगा, आपकी मसल्स मेंटेन होंगी और बहुत सुंदर से क्रिएट होंगी, मसल मास अच्छा बनेगा. क्या खाएं उसके लिए, एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, मीट ले सकते हो, दालें, लेग्यूम, चीज, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, आप ये सब अपने ईच मील में ऐड कर सकते हो. आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने की जरूरत है. होता क्या है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आपको उसमें होल ग्रेन्स डालना है, मिलेट्स डालना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम. प्री वर्कआउट लेना बहुत जरूरी है, खाली पेट एक्सरसाइज करने मत जाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा. क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा तब तक आपका अच्छा मसल मास नहीं बन सकता. तो प्री वर्कआउट में क्या लें, लेट्स हैव ओट्स मील, लेट्स हैव अ टोस्ट एंड अ टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर, एक उबला हुआ आलू या फिर स्वीट पोटेटो, शक्कर कद्दू उबली भी ले सकते हैं, एक कटोरी उबले हुए चावल भी ले सकते हैं. जैसे प्री वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वैसे आफ्टर वर्कआउट पोस्ट मील भी इम्पोर्टेंट है. वो हाई प्रोटीन होना चाहिए और कार्ब रिच होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लंच पूरा, एक पूरा कंप्लीट मील जिसे कहते हैं, या डिनर. कोशिश करें आपका वर्कआउट उस समय पे हो कि आपका लंच पे आप लैंड करें या डिनर पे लैंड करें. ओके, एंड 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है, सो दैट मसल रिकवरी अच्छी हो और आपकी शेप अच्छी आए आफ्टर डूइंग वर्कआउट. एक क्रिटिन होता है, हमें क्रिटिन लेना चाहिए, उससे हमारा मसल स्ट्रेंथ एंड मसल साइज बहुत अच्छा बन जाता है. एंड लास्टली दैट्स व्हाट आई सेड, गुड वेट ट्रेनिंग एंड रेस्ट मेक्स अ बल्की ब्यूटीफुल मेल. जो एक अच्छी बॉडी चाहिए होती है ना, एक मस्कुलर लुक, वो तभी बन सकती है अगर हम अच्छा वर्कआउट करते हैं और अच्छा रेस्ट करते हैं.
2: वाओ, दैट इज सो किलर. अगर अभी तक आपने इनको नोट्स में नहीं कन्वर्ट कर लिया है, देन यू कैन सेंड मी योर डीएम एंड आई विल बी हैप्पी टू राइट दिस आउट फॉर यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक डार्लिंग, बट व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. थैंक यू शिल्पा फॉर बीइंग ऑन बोर्ड विद अस. एंड आप सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आई अग्री कि हर इंसान के 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं, और अगर आपको फॉलोअर्स की इतनी ज़रूरत है देन व्हाई डोंट यू जस्ट बाय देम डार्लिंग, इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक या इंस्टा. सी द थिंग इज, हम सबको पता है कि हर 2-3 महीने में एक टाइम तो आता है व्हेन यू वांट टू ब्लॉक योर पार्टनर बिकॉज दे आर जस्ट बीइंग सो क्रिंज और क्रीपी. लेकिन जब आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया होता है, उसके मम्मी पापा का क्या करोगे? उन्हें भी ब्लॉक करोगे तो बदतमीजी लगेगी, उन्हें नहीं ब्लॉक करोगे तो योर पार्टनर विल जस्ट टॉक यू फ्रॉम दैट अकाउंट. सो एक्चुअली दिस इज अ लूजिंग प्रोपोजिशन फॉर यू विच एवर वे यू लुक एट इट. ऑल्सो अगर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की मम्मी मेरे इंस्टाग्राम पर होती तो जो सब मैं इंस्टाग्राम पर करती हूँ आज कर नहीं रही होती मुन्ना. ऑन दैट नोट, यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: This is something special.

0: The interest is all of that interesting structure. Today I will show you how it can plan a full weekend trip step by step. Let us say we are planning a weekend trip to Rome. Normally you would Google places, open tons of tabs, copy notes into a document, switch to ChatGPT and try to
1: मेरे हिसाब से ना आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, स्पेशली जब मैं आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देती हूँ, यू थिंक कि मैंने पढ़ा ही नहीं है. कभी कभी मैं आपके मैसेजेस संभाल के रखती हूँ सो दैट आई कैन आंसर देम व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू ऑन रेडियो. जैसे मेरे को तुषार ने मैसेज लिखकर भेजा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब होने वाली गर्लफ्रेंड को, ये बताना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ बट मैं नॉर्मल बंदों की तरह कुछ नहीं करना चाहता. आई रियली लाइक हर और हम इकट्ठे चिल करते हैं बट एक तरीका बता जिससे मैं उसे आई लव यू बोलूँ तो वो ज़िंदगी भर कभी ना भूले. एक्चुअली तुषार, मैं ये सोच रही थी कि आप एक काम क्यों नहीं करते, उसे डिनर पर ले जाओ या अपने घर बुला लो डिनर के लिए, दैट वुड बी परफेक्ट. और अपनी मम्मी की लिपस्टिक चुरा लो, ठीक है? अब वो कभी ना कभी तो वॉशरूम जाएगी, राइट? तो आप वॉशरूम में शीशे के ऊपर बड़ा बड़ा लिपस्टिक से लिख देना, रिचा आई लव यू. आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया बट मैं तो जनरली कोई भी बोल रही हूँ, तो जो भी उसका नाम है वो नाम एंड आई लव यू इन लिपस्टिक ऑन द शीशा, शी इज़ गोइंग टू टोटली लव इट. लाइक इट्स जस्ट सो रोमांटिक. और उसके बाद नेचुरली वो आपसे पूछेगी कि आपके पास लिपस्टिक कहाँ से आई, तो आप बोल देना कि मम्मी की लिपस्टिक है, इनकेस शी थिंक्स कि आपने किसी और लड़की की.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: आज मेरी गली में कल किसी

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na viva la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Aap hold karna ek second, bhai sahab. Isko vahan se mat uthao, yaar. Aise nahi uthega, yaar. Toot jayega, sara saman toot jayega vahan se. Mat karo usko vahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है?
2: तो मैं आपको
1: बता दूँ।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट

0: करनी थी।
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की।
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

बजा दूं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

सिंगर मुकेश जी की आवाज में कितनी इनोसेंस है ना, मुझे कई बार उनकी आवाज ऐसे बेबी वॉइस लगती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मुकेश जी 10 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे और उनकी बड़ी सिस्टर उसको म्यूजिक सिखाने के लिए एक टीचर आते थे और ये छोटे से साथ वाले कमरे में चुप चुप के ये म्यूजिक सेशंस जो है, म्यूजिक क्लासेस जो है, वो देखा सुना करते थे। और तब ये म्यूजिक टीचर ने इनको नोटिस किया और इनको भी अपना शागिर्द बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सो आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है? सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाइए।
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में यही फायदे मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
3: मैं पागल है क्या?
4: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा।
3: सुन ले बात
4: मेरी,
3: सुन पहले बात सुन।
4: हाँ सर
3: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है। सर बोलिए
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

अमर अकबर एंथनी का ये गाना ऋषि कपूर साहब पे पिक्चराइज्ड है, राइट? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसकी एक लाइन अमिताभ बच्चन साहब पे भी पिक्चराइज्ड है। सो इन द मूवी ऋषि कपूर ये शो परफॉर्म कर रहे होते हैं और अमिताभ बच्चन उनका ये शो देखने आते हैं और एक लाइन अकबर मेरा नाम नहीं है, अमिताभ बच्चन पिक्चराइज्ड है। तो इस लाइन को गाने के लिए ना किशोर कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो एक लाइन गाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी प्राइस कोट की। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर सोचा कि वो एक लाइन अब रफी साहब ही गा रहे हैं तो उन्हीं की गाई भी पिक्चराइज कर लेते हैं। तो ये सीन हुआ था। फिलहाल सीन ऐसा है कि मुस्कान को ले जाएं आप कान तक और कान रखें मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। साथ ही रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

क से कैसे हैं आप? अ से अच्छे हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अब इसे आप सुपरस्टिशन बोल सकते हैं, लकी चार्म बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश अपनी फिल्मों के नाम अ से रखते थे। फिल्म्स लाइक आपकी कसम, आक्रमण, आशिक हूँ बहारों का, आखिर क्यों, अपनापन, आशा, अर्पण, आदमी खिलौना है, आन मिलो सजना, ये जे ओम प्रकाश साहब राकेश रोशन साहब के ससुर जी थे, ऋतिक रोशन के नाना। और इन्होंने ना एक ही फिल्म बनाई जिसका नाम अ से नहीं शुरू होता था। वो फिल्म भी चल गई थी, ऐसा नहीं कि फ्लॉप हो गई। ये फिल्म थी राजा रानी और इसका ये गाना मुझे आए हाय इतना पसंद है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

जीनत अमान की कितनी सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, लेकिन उनकी फेवरेट पता है कौन सी रही है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रही है 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू। सुनिए इस बारे में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया।

0: हम लोगों को इन्वॉल्व कर दिया था और हम लोगों ने अपना दिल से इनपुट दिया उनको और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इनकॉर्पोरेट भी किया. मेरी ज़रा सेल्फिश रीज़न भी थी बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ परसेंटेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फिल्म फर्स्ट टाइम एज एन एक्टर.
1: ये बात थी. वैसे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म कुर्बानी के पीछे फिरोज खान साहब की धर्मात्मा फिल्म से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए.
0: उसमें उन्होंने मुझे एक सेकेंडरी रोल ऑफर किया था जिसे मैंने मना कर दिया तो वो मुझसे नाराज हो गए और कुछ फोन पे कुछ उलट सुलट कह दिया जिससे मैं उनसे नाराज हो गई. तो फिर हमारी बातचीत ही नहीं हुई. फिर जब वो कुर्बानी बना रहे थे उन्होंने फोन किया और बोला अब ये सेकेंडरी रोल नहीं है तीनों तमाम.
1: तो इस तरह ये कुर्बानी में आ गई और छा गई. पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

కొనుగోలు

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

लता मंगेशकर एंड आशा भोसले सिंगिंग टुगेदर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। दोनों बहनों में बहुत प्यार था लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उतनी राइवलरी और कंपटीशन भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जो गाने लता जी के लिए और किसी वजह से वो नहीं गा पाती थी तो वो आशा भोसले जी को मिल जाते थे, लेकिन जो गाने आशा जी को जहन में रख के कंपोज किए जाते थे, यू नो कैबरे सॉन्ग्स या थोड़े से ज्यादा सेंशुअल सॉन्ग्स, वो फिर लता जी को ऑफर नहीं किए जाते थे बिकॉज वो उस तरह के गाने नहीं गाती थी ज्यादा। बट वट एवर, वी स्टिल हैव सॉन्ग्स जहाँ पे इन दोनों मेलोडी क्वींस ने साथ में गाना गाया है, और ऐसा ही गाना है पड़ोसन फिल्म का, ये वाला जो हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: हाय शिवानी।
3: हाय
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
4: मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी राम लक्ष्मण मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने ज्यादा राजश्रीस की फिल्म्स के लिए म्यूजिक दिया है और इसमें जो राम थे उनका असली नाम सुरेंद्र था, वो भी एक म्यूजिशियन थे, और लक्ष्मण के नाम से विजय पाटिल म्यूजिक कंपोज करते थे। और आपको पता है इन्होंने मिड 70s में ही या अर्ली 70s में म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया होगा साथ में, और 1976 में सुरेंद्र पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी विजय जो है वो राम लक्ष्मण नाम से ही म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये गाना सुनते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं भाई, वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको कुछ शेर व शायरी सुना सकती हूँ, वो भी किसी और की लिखी हुई। दीदा फाजली मेरे पसंदीदा शायरों में से एक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखते थे और दिल के आर पार हो जाता था इनका लिखा। ये लिखते हैं, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, ये किस गम की कसक है हर खुशी में, चमकती है अंधेरों में खामोशी, सितारे टूटते हैं रात ही में। और ये आगे की दो लाइंस मेरी फेवरेट हैं, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दिल देना सीखो जी।
1: म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी मात्र 18 साल की थी जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1959 की दिल देके देखो, और ये फिल्म जब वो थिएटर में देखने गई थी तब का किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
2: जब पिक्चर लगी दिल देके देखो तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा जाके थिएटर में देखती हूँ लोग क्या बोल रहे हैं। पहले बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैंने म्यूजिक दिया। काफी लोग सोचे कि किसी आदमी ने दिया किसी और मेरा नाम दिया है। तो मुझे बड़ा शौक, में जाके देखती थी तो दो तीन लड़के मुझे पहचान गए, क्योंकि पब्लिसिटी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। मतलब उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर की फोटो छापना बड़ी बात हो जाती थी। तो दो तीन लड़के खड़े थे, वो मैं एक कोने में बैठी देख रही थी। वो एक लड़का बताया, अरे तुमने सुना क्या बकवास म्यूजिक दिया इस पिक्चर का। बोले क्यों नहीं, एक भी गाना अच्छा नहीं। दूसरा बता रहे यार हम सोचे थे पता नहीं क्या हुआ, किसी लड़की है जो म्यूजिक दे रही, मुझे तो नहीं लगता। सब बोलते रहे, मैं चुपचाप रही। उसके बाद मैं धीरे से उनके पास आके बोली, भैया मेरे गाने अच्छे नहीं लगे तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं अगली पिक्चर में अच्छा म्यूजिक दे रही। पर एक्सपेक्ट फिर वो बेचारे मुझसे माफी मांग ले, बोले नहीं हम तो आपको ऐसे ये मजे आते थे। हम लोग जाते थे थिएटर में, कहाँ बैनर्स लगे हुए हैं, इसमें मेरा नाम कितना बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है।
1: How adorable and how awesome is this song composed by Usha Khanna ji. हाँ थोड़ा सा उदास गाना है, लेकिन उदासी में भी अलग ही खूबसूरती होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
0: तेरे

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स एवर इज लावारिस का अपनी तो जैसे तैसे। पता नहीं कितने सारे रीमेक्स रीमिक्सेस बने इस गाने के। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन हम इसके वीडियो की बात करेंगे। इसमें जो डांसर है ना, अक्सर ये गलत फहमी हो जाती है कि उन फीमेल डांसर का नाम नेली है। नेली वो एक्ट्रेस थी इस फिल्म में, एक्स्ट्रा एक्ट्रेस थी, जिनकी वजह से ऐसा सुनने में आता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में थोड़ी सी लड़ाई ब्रेकअप टाइप का हो गया था, बिकॉज अमिताभ बच्चन साहब थोड़ा ज़्यादा ध्यान उन पर दे रहे थे। लेकिन ये गलत फहमी है, मतलब ये गलत फहमी है कि इस गाने के वीडियो में जो डांसर हैं वो नेली हैं, वो नेली नहीं है। उन डांसर का नाम है अलका नूपुर, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में एज डांसर परफॉर्म किया है। चलिए अभी तो यहाँ पे गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
3: कहाँ भिजवाना
4: है? मैं आपको
3: बता दो।
4: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा,
3: क्या मजाक कर रहा है?
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है।
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो,
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के बीच में कुछ गिनी चुनी ऐसे डिसएग्रीमेंट्स लड़ाइयां हुई होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, डिसएग्रीमेंट तो बहुत हुए होंगे, लेकिन ऐसे ढेंटडन टाइप की जो लड़ाई होती है वो गिनी चुनी थी। ऐसी एक उनकी कोई झड़प हुई थी जब ये कोई अब्रॉड म्यूजिक टूर पे गए थे, जहाँ पे प्यारे लाल जी जो हैं उन्होंने इम्पल्सिवली ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब वो लक्ष्मीकांत के साथ काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट 2 हफ्ते तक लक्ष्मीकांत जी अकेले ही उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जो इन दोनों को मिला था। लेकिन ये लड़ाई बस फिर 2 हफ्ते की ही थी। इस बीच में इतने सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग पीपल लाइक लता मंगेशकर, मनोज कुमार, जी ओम प्रकाश और इनकी फैमिली के लोग भी, इन्होंने इनको इतना कन्विंस किया, इतना बोला कि भाई पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, तो इनका पैचअप हो गया। अच्छा हुआ हो गया, नहीं तो इतना अमेजिंग म्यूजिक हमको कैसे मिलता। चलिए इन्हीं का कंपोज किया हुआ गाना सुनेंगे, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मैं अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कयामत से कयामत तक फिल्म का नाम पहले नफरत के वारिस होने वाला था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इसका पहले नाम नफरत के वारिस होने वाला था। अगर इस नाम से फिल्म रिलीज होती तो क्या उतनी ही हिट होती? आई गेस सो। लेकिन तब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में से QSQT नहीं बुलाते, तब हम इसे NKW बुलाते। Doesn't sound cool at all, नफरत के वारिस। QSQT is cute and cool। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना,
1: हिट गाना,
2: हिट

0: रेखा एक बेहतरीन डांसर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब एक बहुत पुराने और पॉपुलर इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये डांस कहाँ से सीखा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। मेरे हमारे यहाँ हमारे फैमिली में यही है कि बचपन से सभी डांस करते हैं, माई मदर, माई सिस्टर्स। और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो हाँ, ज़बरदस्ती हम लोगों को डांसिंग स्कूल मम्मी ने भेजा था ज़रूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं। अब मुझे लगता है कि आई विश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती तो। डांस मुझे ये लगता है कि इट्स योर फीलिंग, अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप, इफ़ यू फील इट विथ योर सोल यू नो, तो वो यू नो अंग अंग में आ जाता है। इट्स योर ग्रेस व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक हमारे फैमिली में सभी ग्रेसफुल है।
0: वेल, ग्रेस, एलिगेंस, नजाकत, अदाएं, ये तो ऐसा लगता है कुछ ट्रिक्स हैं। और रेखा एक जादूगरनी, ये बंदी ना इश्क है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Na vjet bala murga. Mirci, murga.
1: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
1: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, कुछ गा के सुनाएगा।
1: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
1: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
1: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा।
2: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन।
1: हाँ सर।
2: और ऐसा बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
1: है। सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
1: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko maa se mat uthao, yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा।
2: क्या मजाक कर रहा
3: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो,
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंफर्ट पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हैप्पीनेस पर नहीं। कैसे, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सही बात है, मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए, लेकिन हमें अक्सर लगता है कि खुशी चीजों से मिलती है,
4: क्योंकि वो चीज जब हम लेते हैं तो टेम्पररी तो वो क्रिएट होती है ना। जैसे आपने नई कार ही ली तो आपको एक दिन तो उसका नशा चढ़ता ही है ना,
3: बिल्कुल,
4: कि बहुत अच्छी है, सब कहते हैं ये नई कार है, ये है ये। अब वो दो दिन चार दिन के बाद भी तो वही है और आप उसी के अंदर बैठे हैं, और उसी के अंदर बैठ करके आप रो रहे हैं, तो वो देख क्यों नहीं रही आपको खुशी। तो जब दुखी होना चाहिए उसमें जाकर के बैठ जाना चाहिए, पर वो डिजाइन ही नहीं करी थी खुशी देने के लिए,
3: वो डिजाइन
4: वो कंफर्ट देने के लिए डिजाइन की थी, वो आपको ट्रैवल में कंफर्ट देने के लिए करी थी।
3: बहुत बढ़िया बात है, तो खुशी अलग है और कंफर्ट अलग है। 1 BHK से 2 BHK आप कंफर्ट के लिए जाते हैं, साइकिल से स्कूटर से गाड़ी आप कंफर्ट के लिए जाते हैं, उसमें खुशी मत खोजो।
4: 1 BHK से 2 BHK की जर्नी भी खुशी से करो,
3: इसको भी इंजॉय करो,
4: उसको भी इंजॉय करो,
3: और 2 BHK से भगवान न करे 1 BHK में आना पड़े उसको भी इंजॉय करो।
4: तो आपको डिसकंफर्ट होगा, नेचुरल सा होगा, जैसे कोविड का पीरियड था, वी हैड टू कम डाउन, अपने लाइफस्टाइल को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा, बिकॉज सो मेनी ऑफ अस वर नॉट अर्निंग, हमारे जो मंथली इनकम थी सबकी थोड़ी स्टॉप हो गई थी, तो सबको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ा। कई बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ा, कईयों को अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल करने पड़े, हर साल ट्रिप लगाते थे नहीं लगा पाए, हर साल कुछ चीजें खरीदते थे नहीं खरीद पाए, फर्क पड़ा, बाहर के लाइफस्टाइल में फर्क पड़ा, अंदर नहीं पड़ना चाहिए था, अंदर नहीं पढ़ना चाहिए था। इनफैक्ट सबको बैठना चाहिए था और आपस में बात करनी चाहिए थी कि ये डिफिकल्ट पीरियड है तो हम कहाँ कहाँ पर अपने खर्चे कम कर सकते हैं। खर्चे कम कर रहे थे हम, खुशी क्यों कम कर रहे थे, पर हमने खर्चे नहीं कम किए, हमने खुशी कम कर दी, क्योंकि हमारी खुशी उन चीजों पर डिपेंडेंट थी ना, वो तो टेम्पररी है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा।

या शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर।

को यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वो

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स ऑल.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सेटबैक से डरना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। आइए इसे और गहराई से समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: डे बिफोर यस्टरडे एक प्रोग्राम के लिए वापी में थी एंड हम एक ग्रुप के साथ बैठे थे। बाद में प्रोग्राम पूरा हो गया और वो बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। वो थी जिसने भुज में जब अर्थक्वेक आया था, सो शी वाज वन ऑफ देम।
2: अच्छा।
3: शी सेड तब उसकी जो एज थी वो 7-8 इयर्स की थी, तो वो सुना रही थी कि उनका कैसे 2 फ्लोर का घर था, अचानक अर्थक्वेक आया। कहते उसके बाद बस अगले मिनट सब कुछ खत्म, घर हमारा टूट गया। उसमें से एक फैमिली मेंबर ने शरीर छोड़ दिया। फादर को वो सब देख करके अचानक हार्ट अटैक आया एंड ही हैड टू बी एडमिटेड इन एन हॉस्पिटल। कहते हम एक मिनट के अंदर सड़क पर आ गए, हमने तो लिटरली जैसे विनाश देखा। 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं, ठंड भी थी उन दिनों में। कहा वो एक्सपीरियंस इतना अलग था कि जहाँ प्यार से आपको पेरेंट्स खिलाते हैं और फिर आपको वो जो ट्रक आता है और ऐसे मांग करके, मना इतनी भीड़ हो जाती है उस समय खाने के लिए लेना। और फिर कहते उस समय जो बुजुर्ग थे वो कई बार चिल्लाते थे कि भाई हमें नहीं दे रहे, बच्चों के ऊपर तो रहम करके देंगे ना, आप बार बार जाकर लेकर के आओ, तो अपने लिए भी लेना
2: और हमारे लिए भी
3: और उनके लिए भी लेना। शी वाज शेयरिंग मेनी स्टोरीज कि वो पीरियड कैसा था एंड आई फेल्ट कितनी देर लगे ना, हम डर रहे हैं ना हम किसी चीज का आह्वान कर रहे हैं, पर हमें ये तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चेंज होने में तो टाइम नहीं लगता ना। लेकिन अगर वो अपने को संभालते नहीं तो कभी भी इस सीन से बाहर आ पाते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Orange Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर मोड़ पर शिकायत नहीं, कभी सीख भी होती है। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ने जब कहा ना कि वैसे मिनटों में जिंदगी पूरा उलट पुलट हो जाती है, तो ऐसे में कभी कभी लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। इसमें तो ना मैं किसी और को दोष दे सकता हूँ, मतलब ये तो इंसान ने किया ही नहीं, ये तो फोर्स ऑफ नेचर है। तो भगवान को ये दोष दें, भाई भगवान क्या हो गया, भाई मैंने क्या किया, इतने लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम।
4: गॉडली कलामिटी नहीं है, नेचुरल कलामिटी है। भगवान को ब्लेम तो हम कर देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब बात आती है तो किसी एक पर तो ब्लेम रख भी नहीं पाते ना, एक को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन गॉडली कलामिटी नहीं होती है, नेचुरल कलामिटीज है। और नेचुरल कलामिटीज क्यों आती है, क्योंकि नेचर को बहुत बहुत सटली हम लोग एक्सप्लॉइट करते जाते हैं। नेचर हमारे लिए है, नेचर देखो क्या करता है, देता जाता है देता जाता है, चाहे वो सूर्य है पानी है एवरीथिंग। बट आप देखें, हमने अपनी डिजायर के कारण, अपनी ग्रीड के कारण नेचर को कितना एक्सप्लॉइट किया। आज ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, आज इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कारण क्या है। देखो अगर आप इसमें भी थोड़ा सा डीपली जाएंगे ना, ओवर कंजम्पशन हो रहा है। जो कहाँ से आ रहा है, जो हम चीजें ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, नेचर से ही तो आ रही है ना। ओवर कंजम्पशन क्यों है, क्योंकि बहुत डिजायर्स हैं। जो गांधी जी ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड पर नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो बहुत इच्छाएं हैं, बहुत ग्रीड है। क्यों ग्रीड है, अंदर में खालीपन है। आखिर फिर रूट वही आ जाता है, आप अंदर खाली हैं, तो आप उस खालीपन को भरने के लिए क्या करते हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं चीजों के प्रति हैं या कुछ भी हैं। अब वो चीजें कहाँ से आएंगे, चीजें जो हम क्या करते हैं, सबकी परचेजिंग पावर बढ़े, इकोनॉमी बूस्ट हो, लेकिन वो सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी ना, चीजें कंज्यूम करने के लिए बनानी पड़ेंगी। तो वो बनती कहाँ से है, पहले तो आपको वो सब रॉ मटेरियल तो अर्थ से ही लेना पड़ेगा, फिर उसको क्रिएट करने के लिए जो आपकी इंडस्ट्रीज आदि है उसमें भी जो फॉसिल फ्यूल आदि यूज होगा यहीं से होगा, फिर वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, देयर इज सो मच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, फिर ग्रेजुअली वो किसी न किसी रूप में सामने आता है। तो नेचर को अगर हम हार्मनी में रहें, इसलिए फिर अब देखो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो हमें 5 R सिखाते हैं, रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, आपका जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करो, रीथिंक करो। आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या प्रकृति अफोर्ड कर सकती है? आप प्राइस टैग देखते हैं, आप कहते हैं आई कैन अफोर्ड दिस, क्या प्रकृति उसको अफोर्ड कर सकती है? रीथिंक करो, जो नहीं चाहिए उसको रिफ्यूज करो। पर हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, ऑल ऑफ अस इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट विद नेचर, ये भी बहुत सटल होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कई बार देखे ना अभी भी वाइल्ड फायर्स होते हैं, तो इतने सारे घर कई बार एक साथ रो में जल जाते हैं, फिर एक बच जाता है। लोग यही सोचते रहते हैं, ये एक कैसे बच सकता है। या जब कई बार फ्लड आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई एक स्पिरिचुअल प्लेस होगी वो बच जाती है। कभी कभी तो इफेक्ट भी होती है, पर कभी कभी बच जाती है। दोनों एनर्जी है, प्रकृति भी एक एनर्जी है, उस स्थान की भी एक एनर्जी है। जिसकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल होगी, दूसरी एनर्जी को झुकना पड़ता है। जैसे हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें दिखाते हैं उसको सिंबॉलिकली, कि वो कृष्ण को लेकर के जा रहे थे तो बहुत तूफान था, प्रकृति का ही तो तूफान था ना, लेकिन कृष्ण प्योर था, तो उसके अंगूठा भी टच हुआ तो वो तूफान रुक गया। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट कि जो प्योरिटी की पावर है वो इतनी ज्यादा है कि फिर वो नेगेटिव एनर्जी को भी शांत कर देती है। एंड दिस इज व्हाट यू सी इन वर्ल्ड आल्सो, कई बार वो जो ज्यादा पावरफुल प्योर स्थान है वो बच जाता है, वो रह जाता है। बट अगेन वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन गॉड, इट्स नॉट गॉडली कलामिटी, इट्स अ नेचुरल कलामिटी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जो कर रहे हो उस पर फेथ होना जरूरी है, क्यों? चलिए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने पिछले 3 साल में 6 नौकरियां चेंज करी हैं और वो बहुत सीधे साफ सरल मन के हैं, और वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जगह में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, मुझसे होता नहीं है। लेकिन वो बहुत सीनियर पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, वो कह रहे हैं कि कई जगह तो मुझे सामने से बोला गया है कि भाई तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको निकाल के फेंक देंगे हम, या तुमको इतना इनइफेक्टिव कर देंगे तुम अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास चॉइस है कि मैं उनका हिस्सा बनूं उस बड़े ग्रुप का जो ये पॉलिटिक्स करती है, अपने आप में ही पता नहीं उनको क्या मिलता है इससे, या मैं इससे दूर रहूं। अभी तक मैं दूर रहा, मेरे करियर में कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ, मैं 3 साल 4 साल 7 8 साल से इनफैक्ट मैं स्टैग्नेंट ही हूं, या फिर मैं बोलूं या मेरा घर परिवार है, मुझे उसको चलाना है। तो जब सामने वाले आपको कह रहे हैं कि भैया देखिए अगर आप इसका हिस्सा नहीं होंगे तो आपको को महत्व नहीं दिया जाएगा, आप ऐसे माहौल में कैसे आगे बढ़ेंगे?
4: अगर आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते उससे फर्क नहीं पड़ता है।
3: अच्छा,
4: एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू परफॉर्म ग्रेजुअली, तो फिर वो बोलता है ना, आपने जो किया है वो रिजल्ट तो बोलता है, सफलता तो बोलती है। फिर आपको कोई समझो दे, वो समबडी हू वाज शेयरिंग विद मी कि शी इज गुड एट हर वर्क, बट इनिशियली सब जैसे काम पूरा हुआ, फिर 5 बजे हैं, सब मिलते हैं, फिर कारोबार जिसको बोलते हैं, फिर कुछ ड्रिंक करना, मिलना, ये वो, मैं उसका हिस्सा कभी नहीं बने। तो जब हिस्सा नहीं बने तो इनिशियली एक्सेप्टेंस भी नहीं, थोड़ा सा रिजेक्शन, थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं, थोड़ा सा फेवर भी नहीं, प्रिविलेज भी नहीं, बट शी वॉज गुड एट हर वर्क, परफॉर्म किया, आउटपुट दिया, शी इज एट अ सीनियर पोजिशन टूडे। एज लॉन्ग एज आप परफॉर्म करते हैं, आप आउटपुट दिखाते हैं, कौन सी कंपनी होगी जो आपको निकालेंगे मुझे बताएं, क्यों निकालेंगे वो? लेकिन अगर आउटपुट भी नहीं है देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आई रियली डोंट फील कि अगर आउटपुट है तो आपको कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की जरूरत है। ये जरूर हो सकता है कि अगर आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते तो लोग आपके बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्ट करते हैं, टॉन्ट कर देते हैं, दैट इज ओके, इट इज ओके। आपको फेथ होना चाहिए आप जो कर रहे हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पॉजिटिव चेंज शुरू होता है आप से, ना कि दूसरों से। कैसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: वो जो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ इस सिस्टम में, ये क्यों कर रहे हैं लोग, जो बहुत इसको सह नहीं पाते, उनको कैसे गाइड मेंटोर करेंगे आप?
4: सिस्टम को चेंज वही कर सकता है जो पहले खुद में चेंज लेकर आए। खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है।
3: स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
4: इफ यू रियली वांट टू सी एनी पॉजिटिव चेंज,
3: ब्रिंग इट इन योरसेल्फ।
4: इट बिगिंस विद यू।
3: बिगिंस विद।
4: वेदर इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज। वो गांधी जी की कहानी सुनाते थे ना, आपने भी सुनी होगी। एक माता अपने बच्चे को लेकर आई गाँव से, 20 किलोमीटर चलकर आई। उसने गांधी जी को कहा, आप इसको बोलो ये ना मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, आप इसको बोलो नहीं खाए। तो उसने कहा, अच्छा आप एक हफ्ते के बाद लेकर के आना। फिर वो 20 किलोमीटर वापस गई। फिर वो एक हफ्ते के बाद 20 किलोमीटर के बाद अपने बच्चे को लेकर आई। फिर उन्होंने महात्मा जी ने कहा, गांधी जी ने, बेटा ये अच्छी चीज नहीं होती, आप ये नहीं खाओ। तो वो बहुत अपसेट हो गई मदर कि आपको यही बात कहनी थी तो पिछले हफ्ते कह देते। मैं 20 किलोमीटर वापस गई फिर आई, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि पिछले हफ्ते तक मैं भी खाता था। इस एक हफ्ते में पहले मैंने छोड़ा। So when I left it, only then can I tell the child na, not to do it.
3: Practice
4: what you preach. माना अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो वो चेंज आप सिस्टम में या कहीं पर भी बाहर नहीं ला सकते।
3: Yeah, बहुत बढ़िया बात है। वाह वाह।
4: So you begin with yourself and gradually just be an example. This is what I feel. Talk the walk.
3: बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
4: नो सॉरी, वॉक द टॉक। माना आप सिर्फ बातें नहीं करो, जो भी आप बोल रहे हैं वो आप करना शुरू करें। देयर विल बी सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल हु विल गेट इंस्पायर्ड एंड स्टार्ट फॉलोइंग यू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 101.3।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mastery, patience और practice से तैयार होती है. Magic से नहीं. कैसे? आइए समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर श्रेया, कई बार ऐसा होता है कि काबिलियत है लेकिन जरूरी नहीं कि मैं किसी चीज में माहिर हूँ. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 15-20 साल पहले मुझे एक मेरे जो बॉस थे एक अप्रेजल में उन्होंने मुझे कहा कि विशाल तुम बहुत सारे चीजों में बहुत अच्छे हो, तुम हर में 7/10, 8/10 हो, तो बहुत सारी क्षमताएं हैं तुम में जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी में तुम 11/10 नहीं हो और ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है. और मुझे बहुत बुरी लगी वो बात उस समय, लेकिन मैंने कहा ठीक है चलो इस पे काम करते हैं. कट टू टुडे, जब मुझे लगता है कि आज का जमाना ऐसा है कि शायद आपको बहुत सारी क्षमताओं में अच्छा होना जरूरी है. शायद इट्स गुड दैट आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर, ना अच्छी है बुरी बात ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे प्रमोशन भी नहीं दिया गया, लेकिन आई वेंट बैक सेइंग कोई बात नहीं इस पे काम करेंगे. तो जब आप कह रही हैं कि इफ यू आर गुड एट योर वर्क, समटाइम्स आप बहुत अच्छे नहीं होते अपने काम पे, आप भी सीख रहे होते हैं, आप एक काम पे आए हैं आपको बहुत कुछ सीखना होता है, तो जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हैं, आप माहिर हैं, आप एस कर रहे हैं किसी चीज को. उस सिचुएशन में हाउ डू डील विद इट?
4: आपको अपने पर फेथ होना चाहिए कि ये भी एक जर्नी है और उसमें भी सब कोई मास्टरी लेकर के नहीं आते हैं. हम धीरे धीरे किसी चीज के ऊपर मास्टरी अक्वायर करते हैं, किसी भी स्किल के ऊपर. आज एक खाना बनाना भी है, एक रोटी बनाना भी है, एनीथिंग, यू बिगिन समवेयर. और उसके बाद भी हर एक जो मास्टरी अचीव करता है वो डिफरेंट होती है. कई जैसे होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब नेचुरली होते हैं, और कईयों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को अचीव करने के लिए. एंड इट इज ओके, इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. नाउ पहली चीज है जो आपने कहा कि आपको बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसे कहा. सो वन थिंग आई ऑलवेज फील इज कि हम जरूर फीडबैक दें, पर हमारा फीडबैक हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को थोड़ा एम्पावर करे. जैसे अगर हम इसी चीज को ऐसे कहते कि आप बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे हैं, ये तो किसी किसी में ही होता है, मतलब टू बी गुड एट सो मेनी थिंग्स, लाइक दिस इज ऑल्सो अ रेयर क्वालिटी ना. कई बार क्या होता है हम किसी एक चीज में माहिर है, लेकिन अगर आप बहुत सारा स्किल सेट आपके ऊपर है तो ये भी तो एक विशेषता है. तो आप ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एक चीज के अंदर आप अगर मास्टरी अक्वायर करते हैं तो दैट विल हेल्प यू ग्रो फास्टर. मोस्ट केसेस में हमारी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, हमारा तरीका ठीक नहीं होता. मोस्ट केसेस,
3: बिल्कुल सही कह रही
4: हैं. पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है. अगर वो तरीका ठीक नहीं होता ना तो सामने वाला उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको पहले तो नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो वो हर्ट हो जाता है. तो हर्ट होते है, उसका मन जो है उस एडवाइस को रिजेक्ट करता है कि आप कौन होते हैं कहने वाले, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले. समझो कोई गिफ्ट मैं आपको देती हूँ, अभी वो डायमंड का है तो वो डायमंड की अंगूठी है उस बॉक्स में है, रैप्ड अप है, बहुत सुंदर पेपर बैग है, लेकिन मैं इसे फेंक कर आपको देती हूँ. तरीका मेरा ठीक नहीं था, गिफ्ट तो बहुत सुंदर है पर तरीका मेरा ठीक नहीं था. तो आप उठा के साइड में रख देंगे, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए. और वहीं पर कई बार वो कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे हाथ से वो ड्राइंग बना देते हैं, वो उनको बनाना भी नहीं आता होता. बर्थडे है कोई घर में अपना ही बच्चा होगा, कई बार स्टूडेंट टीचर के लिए लेकर के आते हैं वो कार्ड, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. कभी कभी हम 10-10, 20-20 साल तक भी उस चीज को संभाल के रखते हैं.
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जो तुरंत मिलता है हमेशा सही नहीं होता, कैसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ज्यादातर इंसान जो होते हैं मेरे जैसे, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंसान एक दो दिन ट्राई कर भी ले, उसको जब इमीडिएट नतीजा नहीं दिखता है तो अक्सर द रीजन व्हाई आदमी इसको बहुत समय तक नहीं कंटिन्यू कर पाता है क्योंकि चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, उसका इफेक्ट नजर नहीं आता और वो वापस अपने रोजमर्रा की दिनचर्या पे चला जाता है। जैसे मैं डाइट करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने अगले दिन अपना वेट देखा, अरे 200 ग्राम कम हो गए, तो एक मोटिवेशन मिलता है, अरे 200 ग्राम कम हुए, चलो इसको कोशिश, इसको जारी रखते हैं। फिर कभी 300 ग्राम बढ़ भी जाता है लेकिन लगता नहीं, नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं जिससे चेंज हो।
4: अभी बहुत सुंदर बात कही कि वी स्टार्ट मेकिंग एफर्ट फिजिकल के लिए, फिर 200 ग्राम चेंज हो, थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, पर 200 ग्राम भी दिखाई देता है ना, 2 किलो तो नहीं दिखाई देता।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
4: यहाँ हमें 2 किलो देखना होता है डायरेक्टली, दैट्स वेयर वी लूज होप। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट दिस इज इजियर। अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया तो आपको चेंज दिखाई देगा, बट वो चेंज का मतलब ये नहीं है कि अच्छा अब तो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, या कभी मुझे जेलेसी फील ही नहीं होगी, या मैंने आज से करना शुरू किया तो कल मैं एंजल बन जाऊंगा। इट्स नॉट, देयर इजंट एनी मैजिक, दिस इज आल्सो स्टेप बाय स्टेप। जस्ट लाइक यू यूज, आप 1 किलो एट अ टाइम लूज करते हैं, आप 1 पेज एट अ टाइम लिखते हैं। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग टू वॉक, इट्स 1 स्टेप एट अ टाइम। इधर भी ऐसा ही है, आप में से कोई ऐसा है जिसको बहुत इरिटेशन और गुस्सा होता है, नाउ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, तो ऐसा हो सकता है आज आप दिन में 10 बार करते थे तो शायद 9 बार करेंगे, 1 बार नहीं करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो विक्ट्री ना। जैसे आप सिगरेट स्मोक करते हैं, नाउ यू स्मोक 10 सिगरेट्स अ डे, सो सडनली यू कांट क्विट। देर आर सम पीपल हु डू इट ऑल्सो, अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, नहीं तो फ्रॉम 10 यू गो टू 9, यू गो टू 8, यू गो टू 7, यू गो टू 5, एंड ग्रेजुअली वो बंद हो जाता है। सो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन व्हाट वी एस्केप इज द एफर्ट। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिना एफर्ट के मिलता है,
3: जैसे
4: बिंज वॉचिंग।
3: बिल्कुल सही,
4: बिंज ईटिंग।
3: हाँ,
4: आपको कई बार पता भी चल रहा होता है कि जो आप खा रहे हैं वो अनहेल्दी है, मेरा मन कह भी रहा है कि ये नहीं खाना चाहिए,
3: जी
4: मुझे पता है, विवेक
3: होता है। मेरे साथ रोज रात को होता है।
4: सो दैट मीन्स यू नो ना, आपका विवेक, आपकी इंटेलेक्ट कह रही है, वो जजमेंट आप कर रहे हैं कि ये नहीं खाना है
3: जी,
4: लेकिन क्योंकि मन थोड़ा सा कमजोर है, कहता बस एक बार। अब जब आप एक बार खाते हैं तो ऐसा नहीं है आपको कुछ उससे मिलता नहीं है, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है
3: जी।
4: और जब वो इंस्टेंट मिलता है, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू नो यू फील दैट, अ ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है व्हिच इज द प्लेजर हार्मोन। वो जैसे हार्मोन रिलीज होता है यू फील गुड, व्हिच इज वेरी टेम्पररी। जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है, अगर आपको किसी चीज से प्लेजर मिलता है आपको दोबारा दिल होगी वो करने की,
3: बिल्कुल,
4: तो वो धीरे धीरे आप उस पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, फिर वो आपका एडिक्शन बनता जाएगा टू एन एक्सटेंट कि जो ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है आप उसको प्रोकास्टिनेट करते जाएंगे।
3: हाँ, बिल्कुल, ये बाद में करते हैं,
4: वहां से प्रोकास्टिनेशन शुरू होता है। अभी उसके अंदर क्या है, आपको अपने मन में कुछ नहीं सोचना कॉन्शियसली, पिरोस कर मिल रहा है सब,
3: सामने से आ रहा है सब कुछ,
4: सब कुछ। सो वो आप हंसाना चाहे तो आप हंसेंगे, वो रुलाना चाहे तो आप रोएंगे, सो यू फॉरगेट योर लाइफ और आप थोड़ी देर के लिए किसी दूसरी कहानी में टोटली अब्सॉर्ब हो जाते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ मंजिल नहीं, जर्नी का मजा लेना भी जरूरी है। कैसे, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो अमिताभ भट्टाचार्य ने बहुत खूबसूरती से लिखा था एक गाने में कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, और उसको एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है हमें, कि अगर हम सफर को एंजॉय करेंगे तो मंजिल शायद और खूबसूरत नजर आएगी।
4: नेचुरली ये एक पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, हम भूल जाते हैं। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा होता है एंड गोल, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँच कर खुशी मिलेगी। सफर को हम भूल जाते हैं। जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सफर, जर्नी। जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, और जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होते हैं। जब हम जर्नी की बात करें, लाइफ की भी जो जर्नी है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ ना कुछ कोई चैलेंज है, कोई सिचुएशन है। अब आपको ये रिफ्लेक्ट करना है अपने से कि उस अप्स एंड डाउन में भी हम स्टेबल रहते हैं। इट इज ओनली वन आई अचीव, इट इज ओनली वन आई अक्वायर, इट इज ओनली वन आई एम अप्रूव्ड, उस मोमेंट में ही हमें अच्छा लगता है दैट आई एम स्टेबल एंड आई एम हैप्पी ऑल द टाइम। नाउ दैट इज स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज क्वालिटी ऑफ माई लाइफ।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
2: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट ready for this na de dil par de teenu tenne tadaro

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अटेंशन प्लीज, अगर तुमने सुबह का अलार्म 5 बार स्नूज कर दिया है ऑलरेडी, दैट मींस यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद योर स्लीप साइकिल। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स, और ये अभी अभी शुरू हुआ है। एंड देसी लाइफ इन अमेरिका इज ट्रूली नेक्स्ट लेवल। पेरेंट्स इंडिया से सोच रहे होते हैं यू आर लिविंग द फॉरेन ड्रीम, मीनवाइल यू आर स्टैंडिंग इन कॉस्को एट 8 AM वंडरिंग व्हाई ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन योर चाइल्डहुड एम्बिशंस। बट चलो यार, whether you're driving to work right now, या फिर pretend कर रहे हो work from home करने का, या फिर secretly you're eating leftover biryani for breakfast, this is the show where you get a little slice of life, little slice of home with extra तड़का। तड़का लगता है Bollywood की gossips का, feel good vibes का, around the world की खबरों का, और साथ साथ में थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें। And of course, I've got a killer playlist for you, my people। एकदम मिर्चीदार झिंटक गाने मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। मेरा नाम है प्रिसिला, ऑल्सो ह्यूज वार्म हग टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग ईद, ईद मुबारक फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मिर्ची मॉर्निंग्स, ओनली योर फेवरेट ब्रेकफास्ट शो। फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी चाहिए 9033 मिर्ची, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9033647244। सब नोट कर लिया है तो अब आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स only for you, sit back, relax and good morning meri jaan।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपने गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात,
4: मेरी
3: बात सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर
4: रहा है सर। बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो सेगमेंट जहाँ पर हम हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। सो लेट्स टाइम ट्रैवल टुगेदर। सबसे पहले चलते हैं 1930 में, डिज्नी रिलीज द थ्री लिटिल पिग्स। 1937 में सैन फ्रांसिस्को's आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज ऑफिशियली ओपन्ड टुडे। 200,000 पीपल वॉक्ड अक्रॉस इट ऑन डे वन। 1939 में बैटमैन मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एवर। एंड ऑनेस्टली उसके बाद से हर देसी बच्चा अब्रॉड ऑल्सो विशेस फॉर अ डबल लाइफ। और हम तो जी भी रहे हैं, डे टाइम में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और नाइट टाइम में शेफ एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर रिलेटिव्स इन इंडिया। देन इन 1964 इंडिया लॉस्ट जवाहरलाल नेहरू जी, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अ लीडर हु हेल्प्ड शेप मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड इन 1998 पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स एंड ऑफिशियली बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। और कुछ ऐसे चाय फ्रेंडली हिस्ट्री नगेट्स तुम्हें पता है तो फटाफट से मुझे डीएम करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड अ क्विक रिमाइंडर, इफ योर प्लेट इजंट ओवरफ्लोइंग आज के दिन विद ईद के पकवान, आर यू इवन डूइंग ईद करेक्टली? ईद मुबारक टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। मे योर डे बी फिल्ड विद पीस, लाफ्टर, फैमिली, अनलिमिटेड बिरयानी एंड लॉट मोर। Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो मुझे लाइफ में बॉडीगार्ड चाहिए ताकि मैं खुद के पैसे खुद से प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग गाइस एंड लिसन टू दिस। एक्टर राम चरण हैज रिपोर्टेडली हायर्ड एन एमएमए फाइटर एज हिज बॉडीगार्ड एंड अपेरेंटली ही इज बीइंग पेड अराउंड 2 to 4 lakh रुपीज पर डे। मीनवाइल हमारे देसी पेरेंट्स आफ्टर हियरिंग दिस आर लाइक, बेटा तुम भी जिम ज्वाइन कर लो, इंजीनियरिंग तो वैसे भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही है। द बॉडीगार्ड्स नेम इज केविन कुंटा। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम गैम्बिया एंड पार्ट ऑफ इटलीज नेशनल एमएमए टीम बैक इन 2021 एंड नाउ ही इज अकंपनिंग रामचरण ड्यूरिंग प्रमोशंस फॉर हिज अपकमिंग मूवी पेडी। देखो आजकल बॉलीवुड के प्रमोशंस ऐसे फील होते हैं जैसे एवेंजर्स के ऑडिशंस चल रहे हैं। पहले ना स्टार्स अपने सनग्लासेस पहनते थे, काले कपड़े, काली कॉफी लेकर ऐसे ट्रैवल करते थे जैसे UFC की एनर्जी डिस्प्ले कर रहे हो। एंड इमेजिन बीइंग दैट प्रोटेक्टेड। और मैं तो यार टारगेट तक भी नहीं जा सकती विदाउट वन आंटी आस्किंग मी, भैया हो गया तुम्हारा, कांप काहे रही हो, वेयर इज माय एमएमए बॉडीगार्ड यार, जब ऐसे रिलेटिव्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट ओके, रिस्पेक्ट टू वेयर इट्स ड्यू। सेलिब्रिटी क्राउड्स कैन गेट इंटेंस एंड सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, लेकिन स्टिल 4 lakh रुपीज पर डे। मैं सोच रही हूँ आर्जिंग छोड़कर बॉडीगार्ड ही बन जाती, थोड़ी बॉडी वॉडी बनानी पड़ेगी। बट व्हाट डू यू थिंक, बताओ मुझे डीएम करके मैं कैसी लगूंगी बॉडीगार्ड बनके और किसका बॉडीगार्ड मुझे बनना चाहिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल तुम्हारे माइंड एंड हार्ट को गार्ड करने के लिए मिर्ची दर बैंगर्स प्लेइंग राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या गाना है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पे तुम्हें मिलता है मिर्चीदार ऑसम म्यूजिक, ऑफ कोर्स थैंक्स टू माय प्लेलिस्ट। और अभी लेट्स चेक आउट हमारे वेदर का हालचाल, क्या चल रहा है। राइट नाउ इट्स अराउंड 66 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, बेसिकली हुडी वेदर है फिलहाल, विद अ साइड ऑफ डू आई रियली नीड टू गो टू वर्क, जो कि मुझे रोज ही लगता है। हेड्स अप दो, थंडरस्टॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टिल 9 AM। सो अगर तुमने बालों को मारने में 2 घंटे लगाए हैं तो आई एम जस्ट गोना से क्यूट, बट डोंट पैनिक, द रेस्ट ऑफ द डे इज लुकिंग प्रीटी डीसेंट विद पार्टली क्लाउडी स्काइज एक्सपेक्टेड अराउंड 5 PM। टुडेज टेम्परेचर इज हैंगिंग बिटवीन 66 डिग्रीज फारेनहाइट टू 82 डिग्रीज फारेनहाइट, एंड ऑनेस्टली दैट्स क्लासिक कंफ्यूज्ड वेदर। सुबह सुबह तुमसे चाय और ब्लैंकेट मांगेगी, आफ्टरनून कहेगा वेयर इज माई सनस्क्रीन, एंड इवनिंग में फिर से शॉल की जरूरत पड़ सकती है। गुड न्यूज दो, आज 0 mm की बरसात होने वाली है एक्सपेक्टेड overall in the next 24 hours, so do your laundry and finally stop living indoors. You can go out, have some coffee, meet some friends, and aaj ka high jo hai it's pretty similar to yesterday's high. Kal 83 degrees Fahrenheit hit kiya tha and today it's going to be around 82 degrees Fahrenheit. Thoda sa difference hai, it's just like saying I'm consistent but your boyfriend is not. So isi tarah weather ka hal chal janne ke liye mujhe sunte raho, mera naam hai Priscilla, show ka naam hai Mirchi Mornings, mujhse connect karo insta aur x par, mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRC HIPRIS. WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. अभी चलाते हैं कुछ गर्मा गर्म गाने तुम्हारे लिए, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Tony.
1: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
2: All right, welcome to the second hour of Mirchi Mornings. My name is Priscilla, and now we are going to check out the stories from around the world.
1: Mirchi Hour Got 3.
2: सबसे पहले बायजूस फाउंडर बायजू रविंद्रन हैज रिपोर्टेडली बीन सेंटेंस्ड टू 6 months इन जेल इन सिंगापुर ओवर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यूज एंड यस द इंटरनेट इज शॉक्ड बिकॉज दिस इज द सेम गाय हु वंस बिकेम अ बिलियनेयर थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन एंड नंबर टू पर अमिड एन इंटेंस हीट वेव इन पेरिस केओस रिपोर्टेडली ब्रोक आउट ऑन अ पेरिस टू नाइस ट्रेन आफ्टर पैसेंजर्स स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू ब्रीद बिकॉज देर वॉज नो एसी ऑन बोर्ड यस नो AC in a heat wave. The train eventually had to stop mid-journey, causing around a 4-hour delay. Viral videos now show passengers standing outside on railway tracks, trying to catch their breath, drink water, and cool down in the shade. And finally, number three per CSK CEO Kasi Vishwanathan has spoken about MS Dhoni's IPL future amid all the speculation online. He basically said Dhoni will decide his own future and CSK will respect whatever role he chooses, player, coach, mentor, or anything else. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. So, read the Mirchi Mornings. Mujhe follow karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3, अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं बदतमीजी
3: नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला। सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड लिसन टू दिस, अ नाइजीरियन पॉलिटिशियन हु क्लेम्ड ही वाज 30 इयर्स ओल्ड एंड हैड ड्वार्फिज्म हैज रिपोर्टेडली टर्न्ड आउट टू बी just 16 years old after a passport leak revealed his actual age. His name is Mehmood Sadis Buba. Apparently, he told supporters he was 30 so he could qualify to run for the National Assembly elections in 2027. But once the passport leak happened, he withdrew from the race. Bro, this is why desi parents are like, har cheez ka document rakhna chahiye, kyunki documents kabhi jhoot nahi bolte. Also, imagine being exposed by your very own passport. And honestly, South Asians abroad understand this very, very deeply. One age on arranged marriage ka bio data, another age on LinkedIn, and completely different emotional age after paying the rent in dollars. Okay, that's enough life lesson for the day. Let's talk about some sparkle right now. Shout out to RK Jewels, jahan pe tumhe mil rahe hain real diamond jewelry at real prices. Yahan par koi jhol jhal nahi hai. Yahan par tumhe pay karne hain zero hidden charges, zero labor charges, ya zero extra charges. और वो भी खालिस गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी तुम्हें मिल रही है, तो ऐसा मौका कोई कैसे जाने दे भला, वो भी ईद के इस स्पेशल ओकेजन पर। तो तुम्हारी ईद की ज्वेलरी शॉपिंग तो सेट हो चुकी है, फटाफट से पहुंचो आरके ज्वेल्स पर, जहां पर बेस्ट क्वालिटी मिलती है बेस्ट प्राइस पर। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। फिलहाल बने रहो प्रिसिला के साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 903 मिर्ची, दैट्स 9033647244। आने वाले कुछ मिर्ची दार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Radio Mitchie, New York. It's hot.

Radio Mitchy, New York. It's hot. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: आज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पट रहे हैं उसके साथ। आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है। गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce 100 grams किलो बार्स पैम सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड की प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ वी हेड स्ट्रेट इनटू
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट आउट ऑफ वर्जीनिया। एन इंडियन ओरिजिन वुमन नेम्ड मेघना बेन पटेल वॉज ट्रेजिकली शॉट ड्यूरिंग अ सस्पेक्टेड रॉबरी अटेम्प्ट एट अ सुपरमार्केट वेयर शी हैड रिपोर्टेडली वर्क्ड फॉर 10 years। सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट हैज सर्फेस्ड एंड द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सेंडिंग थॉट्स एंड प्रेयर्स टू हर लव्ड वंस बिकॉज नो फैमिली शुड गेट अ फोन कॉल लाइक दैट। नंबर टू पर द पुणे पोर्शा केस इज बैक इन कॉन्वर्सेशन आफ्टर अ वायरल वीडियो शो the accused juvenile's father Vishal Agrawal reportedly celebrating after getting bail, and the case continues to remain a huge talking point online. And finally, number three per US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. went viral after posting a video casually picking up two snakes with his bare hands in Florida. Apparently, one snake even tried to bite him while his wife can be heard saying, "Honey, let them go, please." And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. With me, Priscilla, on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
2: कहाँ भिजवाना है?
3: तो मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। अब बारी आ चुकी है हमारा भविष्य जानने की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: इरीज यानी मेष राशि, आज जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करोगे। यू आर रेडी टू रोस्ट एवरीवन बिफोर ब्रेकफास्ट, बट स्टार्स आर सेइंग मेबी डोंट फाइट अथॉरिटी टुडे। ओके, लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 11। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्टॉप प्रिटेंडिंग आई एम फाइन व्हेन क्लियरली यू नीड चाय एंड इमोशनल सपोर्ट। ओपन अप टू लव्ड वंस टुडे। आज का लकी कलर इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, समवन मे नॉट लाइक योर bold opinions today, but honestly, when has that ever stopped a Gemini? Lucky color for you is neon green, lucky number is 5. Cancer yani Karak Rashi, don't overthink every tiny thing yaar, you are stronger than your browser history of panic googling, trust yourself today. Lucky color for you is crimson, lucky number is 18. Leo yani ki Sinh Rashi, you're craving an escape from routine, take that mini break, solo drive or dramatic target walk, main character energy ko activate karo dost. Lucky color for you is ivory, lucky number is 3. Virgo yani Kanya Rashi, you actually have more control than you think today, push the right buttons emotionally, professionally, mentally and physically, not microwave buttons randomly. Aaj tumhara lucky color is teal and lucky number is 14. And that's it for Rashi Zone part 1. Thodi si der mein part 2 lekar aungi main, bole to Priscilla on Mirchi Mornings. Tab tak ke liye tum ye Mirchi Dar Bangers suno, mujhe jaakar follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. Thoda sa chill maro, relax karo aur stay tuned raho.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और यहाँ पर हम स्टार्स की बातें पता करेंगे।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी तुला राशि, बिग अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग बट यू आर हेजिटेटिंग टू मच। आज रिस्क को थोड़ा सा स्पेशली करियर एंड मनी मैटर्स में ले डालो तुम। आज तुम्हारा लकी कलर इज मिंट सिल्वर, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, नोबडी कैन फोर्स यू इनटू एनीथिंग टुडे बट डोंट बी स्टबर्न जस्ट फॉर ओलंपिक लेवल एटीट्यूड। लकी कलर फॉर यू इज अजूर एंड लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करो। If there's an easy path available, take it. You don't need struggle for character development every day. Lucky color for you is navy blue. Lucky number is 31. Capricorn yani makar rashi, stop complaining about where you are right now. The universe placed you there for a reason, probably growth and taxes. Lucky color for you is khaki color. Lucky number is 6. Aquarius yani kumbh rashi, you've been pushing yourself too hard lately. Today's vibe is slow down, breathe, recharge and maybe stop answering emails instantly. Lucky color is ice purple. Lucky number is 17. And last but not the least, Pisces yani mean rashi, you already know change is coming. Go with the flow today. Instead of resisting it like desis resist winter jackets at 40 degrees. Lucky color for you is fuchsia. Lucky number is 24. And there you have it, Rashi Zone number 2 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Aur ab Mirchi dar bangers chalate tumhare liye. Tab tak tum mujhe jaakar follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, डांस लाइक नोबडीज वॉचिंग के लिए करेज चाहिए होता है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप। लेकिन जाने से पहले, एक्ट्रेस रिधिमा पंडित रिएक्टेड टू अ वायरल रील ट्रोलिंग अनन्या पांडे's भरतनाट्यम फ्यूजन डांस सीक्वेंस फ्रॉम चांद मेरा दिल, जो उनकी लेटेस्ट रिलीज है। अपेरेंटली द रील जोक्ड दैट अनन्या लर्नड भरतनाट्यम फ्रॉम एन ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड रिधिमा सिंपली कमेंटेड, गट्स। Honestly, internet comments these days deserve their own filmfare category. किस एक्टर ने सबसे ज्यादा बुरे कॉमेंट्स झेले हैं थ्रू आउट द ईयर, उनको एक अवार्ड मिल ही जाना चाहिए। क्योंकि एक रॉन्ग मूवी, एक रॉन्ग डांस स्टेप, एक रॉन्ग डायलॉग, ये सब के बाद everyone starts judging these celebrities. But hey, putting yourself out there publicly is not easy, यार। तुम किसको डेट करे, तुम मोटे हो गए, पतले हो गए, तुम कौन सी फिल्म करे हो, ये सब कुछ पर जज किया जाता है। I mean, कॉन्फिडेंस की तो वाट लग जाती होगी, राइट? And despite that trolling, the film starring Ananya and Lakshya has actually been receiving positive reviews from critics. So moral of the story ye hai, just do your thing, because no matter what you do, somewhere someone online or offline is going to judge you. So karo jo karna hai, khao piyo aish karo, aur isi note par Eid Mubarak to everyone celebrating today. May your homes be full of happiness, your biryani perfectly layered and your Eid emotionally satisfying. Thank you for hanging out with me this morning. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. You made the day better. Aur isi note par tada bye bye from me. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

कई बार मुझे समझ नहीं आता कि पुरानी फिल्मों के नाम किस बेसिस पे रखे जाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका फिल्म के पूरे सब्जेक्ट से, पूरी फिल्म से ऐसे कोई खास तालमेल नहीं है। जैसे आपकी कसम मूवी, तो इस फिल्म में राजेश खन्ना एक शक्की हस्बैंड प्ले करते हैं जो अपनी वाइफ मुमताज पे शक करते हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ, लव लाइफ पूरी ऐसे तबाह कर लेते हैं। अभी इसमें आपकी कसम का क्या मतलब है टाइटल का, है ना? शक्की पति, ऐसे ऐसा नाम ज्यादा सूट करता है इस फिल्म को। खैर जो भी है, आपकी कसम गाना बहुत अच्छा है, पुरानी जीन्स पर सुन लेते हैं। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय
2: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट पटाक।
0: पुरानी चीज़ विद चारू, ओनली ऑन

जल भुन के खाक हो गए थे ऋषि कपूर और काफी इनसिक्योर भी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई सागर फिल्म को ऐसी बहुत बड़ी फिल्म माना जा रहा था, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया के साथ वापस आ रहे हैं, बॉबी का सक्सेस रिपीट होगा, ये वो फलाना डिमका, दोनों साथ में आए, लेकिन फिल्म की सारी लाइमलाइट कमल हासन साहब ले गए। और कमल हासन साहब और डिंपल कपाड़िया का जो उसमें सॉर्ट ऑफ दोस्ती रिश्ता दिखाया गया था उसको ज्यादा पसंद किया गया। और तो और इस फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का और कमल हासन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, विच काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड ऋषि कपूर, विच इज एक्चुअली नेचुरल ऑल्सो यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन और लाइफ होता है। आप अपने साथ वालों के लिए खुश होते हो लेकिन अपने लिए भी दुखी हो जाते हो जीवन में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: लिरिसिस्ट गुलशन बावरा ने पुराने टाइम के और लिरिसिस्ट के कंपैरिजन में गाने थोड़े कम लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं
1: क्या लिखे हैं?
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार उनसे उनके फेवरेट गाने के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
2: ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि मेरा सबसे पसंदीदा कौन सा गाना है, लेकिन मुझे एक गाने का जरा वो जो मेरे दिल पे चोट लगी थी और जो मैंने लिखा था वो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो है चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ा। वैसे तो मेरे देश की धरती सोना उगले वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, इन दोनों गानों पे मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, लेकिन वो गाना मुझे कुछ चांदी की दीवार न तोड़ी दिल को थोड़ा सा।
0: वेल ये तो हुई इनके फेवरेट गाने की बात, लेकिन यहाँ पे हम सुनेंगे एक गाना जो पता नहीं कितने लोगों का, शायद पूरी जेनरेशन का फेवरेट गाना है, क्योंकि इसके इतने कवर वर्जन्स बन चुके हैं, इसके रीमेक्स रीमिक्सेस बन चुके हैं। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

बचपन में ऐसे लगता था इस गाने में बोल रहे हैं कि आशियाना ढूंढते हैं, साबुदाना ढूंढते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़े ओके समझ में आया आबुदाना का मतलब, इस गाने में भी रियल लाइफ में भी खाना पीना रोजी रोटी, और जो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपने घरों से दूर रह रहे हैं, अकेले भी रह रहे हैं, वो कुछ लाइन्स से बहुत रिलेट करेंगे। ये लाइन्स शहपर रसूल नाम के शायर हैं, इन्होंने लिखी हैं। कोई साया न कोई हम साया, कोई साया न कोई हम साया, आबोदाना ये किस जगह लाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1981 की फिल्म कुदरत 1979 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होती गई, जैसे प्रोड्यूसर B.S. खन्ना, डायरेक्टर चेतन आनंद और एक्टर राजेश खन्ना के बीच में काफी डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स आ रही थी। राजेश खन्ना बाय देन हैड स्टार्टेड थ्रोइंग अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स। एक चीज जो सुनने में आती है कि इस फिल्म में मेन लीड में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी थे, साथ में राजकुमार, प्रिया राजवंश एंड विनोद खन्ना भी थे। और विनोद खन्ना की कुर्बानी फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। उनकी इस पॉपुलैरिटी से राजेश खन्ना थोड़े से इनसिक्योर हो गए और कुदरत फिल्म के पोस्टर्स जो लगे थे, उनके जो भी प्रमोशन हो रही थी, उससे उन्होंने विनोद खन्ना की फोटोज जो हैं वो हटवा दी। ऐसा सब सुनने में आता है, और भी बड़ा कुछ हुआ था। करते रहेंगे बातें, लेकिन अभी बातों पे ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ सुनते रहिए मिर्ची

0: Milci.
1: Uscabana, uscabana, sacabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Gotham.
2: Good morning.
3: Sir, I actually asked sir, I was requesting to tell you. I heard that you are singing, winging, singing, sir. So, sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na, wo sir thode different hote hain.
2: कैसे बोल सकता हूँ
3: जब तक आपको सुनाएंगे नहीं। पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था तो स्नेक घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा।
3: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं। उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात
3: मेरी
2: बात हाँ। सुन पहले बात
3: हाँ सर।
2: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर। बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है। छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

1969 की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है हिट हो गई थी बिकॉज इसमें हीरो हीरोइन की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज थी। एक तरफ जहां शम्मी कपूर साहब का पागलपन था, वहीं बबीता कपूर का पॉइज ग्रेस। वैसे बबीता कपूर ने एक्चुअली अपने देवर ससुर के साथ इस फिल्म में काम किया, अंकल इन लॉ क्या बोलेंगे। खैर रणधीर कपूर से तो उनकी शादी बाद में हुई थी। कमिंग बैक टू तुमसे अच्छा कौन है मूवी, सो शम्मी कपूर का पागलपन एंड बबीता की ग्रेस। ऐसा सुनने में आता है कि बबीता जी को बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ी थी टू मैच अप विद शम्मी कपूर की एनर्जी। फिल्म भी हिट हुई थी और इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला जो हम सुनने वाले हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: भाई वैसे तो अनुराधा पौडवाल 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनकी शुरुआत 70s में ही हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में इस बिगनिंग के बारे में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: फिल्म मैंने शुरू किया 1973 से, फिल्म अभिमान से। अभिमान का उस वक्त बैकग्राउंड चल रहा था एंड बरमिंदर दा वांटेड अ श्लोक, सो ही टोल्ड माय हस्बैंड अरुण जी जो ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर टू बरमिंदा कि मुझे कोई संस्कृत का श्लोक चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये ट्यून किया है तो इसे थोड़ा घर के टेप रिकॉर्डर के ऊपर तुम थोड़ा गा दो। जैसे वो लेके गए बरमिंदा के पास तो उन्होंने पूछा है किसने गाया है, देन ही सेड कि व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, इन्हीं की आवाज में हम श्लोक रिकॉर्ड करते। सो दैट टर्नड आउट टू बी मतलब प्योर डेस्टिनी एंड That turned out to be the beginning of my career.
0: और actually 70s में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, कुछ बहुत हिट फिल्मों में भी गाने गाए, लेकिन उनके गाए गाने उतने हिट नहीं हुए। उनके करियर का पहला हिट गाना आया 80s में। अजी बहन और भाइयों, उस साल का बेहद लोकप्रिय गीत जो 1984 की गीत माला में पायदान नंबर एक पर था। फिल्म का नाम हीरो, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इसे सुरों से सजाया, आनंद बख्शी के बोल और आवाज मनहर और अनुराधा की। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची।

एक थप्पड़ की गूंज सुनी थी अमिताभ बच्चन साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म थी 1978 की कस्मे वादे, जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी का एक सीन था। सीन में ऐसा कुछ होता है कि राखी जी को अमिताभ बच्चन को एक थप्पड़ मारना होता है, तो अमिताभ बच्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको ऐसा लगा कुछ टाइमिंग गड़बड़ हो गया, जैसे उनको लगा कि तीन डायलॉग के बाद थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वो थप्पड़ दो डायलॉग के बाद ही पड़ गया। तो राखी जी ने एक बार एक इंटरव्यू में ऐसा शेयर किया था कि वो जो एक्सप्रेशन है उस फिल्म में थप्पड़ पड़ने के बाद वाला, अमिताभ का जो एक्सप्रेशन है एकदम हैरानी वाला, वो रियल है, बिकॉज उस टाइम वो थप्पड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन।

भाई ये बड़े बड़े सिंगर्स जो इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाते थे, इनको कितनी मुश्किल आती होगी कई बार सोचते हुए कि कौन सा गाना इनका फेवरेट है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हो सकता है कोई ऐसा गाना हो जिससे उन्होंने पर्सनली रिलेट किया हो, जो उनका फेवरेट बन गया हो। जैसे लता मंगेशकर जी ने कई इंटरव्यूज में अपने फेवरेट गाने शेयर किए हैं, आएगा आने वाला महल फिल्म से, या प्यार किया तो डरना क्या मुगले आजम से, लग जा गले वो कौन थी फिल्म का। और एक और उनका फेवरेट गाना था जो वो अपने हर लाइव शो में म्यूजिक टूर में गाती थी, अनामिका फिल्म का ये गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको
3: बता दो।
4: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा,
3: क्या कर रहा है
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

ये तो हम जानते हैं कि देवानंद साहब अक्सर नए टैलेंट को फिल्मों में चांस देते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर क्या आप जानते हैं कि इन टैलेंट में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी शामिल हैं? शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपनी लाइफ में जो पहला एक्टिंग रोल साइन किया था वो देवानंद साहब की फिल्म प्रेम पुजारी के लिए था। उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे देश के मिलिट्री ऑफिसर का रोल निभाते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के काम से इम्प्रेस होकर देवानंद ने फिर अपनी एक और फिल्म गैम्बलर में भी उनको एक अच्छा खासा रोल दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Only on Radio Mirchi. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

0: विनोद खन्ना साहब रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब उनके फादर वेल टू डू अफ्लुएंट बिजनेसमैन थे और विनोद खन्ना साहब एक रिबेल टाइप के थे। अपनी टीनेजर में बहुत पार्टी वार्टी करते थे और ऐसी एक पार्टी में उनको सुनील दत्त साहब ने देखा और फिल्म ऑफर की। लेकिन ये बात जब उन्होंने अपने घर में बताई तो घर से तो मना हो गई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना साहब ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने अपने फादर से ये कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उस वक्त 18 साल का था, 19 साल का। बिसाइड्स बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, बाकी सब इवन मेरे साथ वो चीजें हुई, पर वो एक रिबेलियन हो गई थी उस वक्त कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे करने दीजिए। माय मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव एंड माय फादर हैड अ लिटिल हेसिटेशन बिकॉज़ ही वाज वरीड। आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड टू यू नो पुट मी इनटू बिजनेस बिकॉज़ चेंज हिज एटीट्यूड लेटर व्हेन ही सॉ दैट आई यू नो दैट आई गॉट द सक्सेस दैट आई एंड आई डिजर्व टू बी वेयर आई वाज। ही वाज वेरी नाइस टू मी देन, बट इनिशियली तो उस वक्त तो हर कोई पेरेंट कोई किसी को जाने नहीं देता था फिल्म इंडस्ट्री वाज द बिग बैड वर्ल्ड।
0: और आप सोचिए इस बिग बैड वर्ल्ड में उनकी शुरुआत विलन वाले रोल से हुई तो मम्मी पापा कितना ही घबरा गए होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

1965 में जब शमी कपूर जी की वाइफ गीता बाली जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद शमी कपूर जब वापस काम पर आए तो उन्होंने पता है पहली चीज क्या शूट की थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो फिल्म थी तीसरी मंजिल और वो शूटिंग थी उस गाने की जिसे मरते दम तक शमी कपूर जी अपनी वाइफ गीता बाली जी से कनेक्ट करते रहे, रिलेट करते रहे। ये गाना था तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमी थम गया आसमान। सुन लेते हैं ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: फरहान अख्तर की प्लेलिस्ट में टॉप गाना कौन सा होगा पता है? दगा बाजरे है, दगा बाजरे।
1: श्रुति, श्रुति,
2: श्रुति। मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बड़े ही प्यार से वो डेडिकेट कर रहे होंगे ये गाना टू नन अदर देन रणवीर सिंह। हेलो जी, हाय। हाँ जी, आपको जरा अपडेट दे देती हूँ। बेसिकली FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय ने रणवीर सिंह के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव अनाउंस किया है। अब चलिए इसके रीजन पे जाते हैं। सो बेसिकली फरहान अख्तर डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म डॉन 3 में लीड रोल मिला था रणवीर सिंह को। इनफैक्ट अभी कुछ हफ्तों में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, विच मीन्स के प्री प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था। बट बॉम्ब तब गिरा जब रणवीर सिंह ने इस मूवी से रातों रात एग्जिट ले लिया, जिसकी वजह से द फिल्म एंड द एंटायर टीम हु इज इन्वॉल्वड इन इट वो बीच मझधार में फंस गए हैं यार। एंड दैट इज द रीजन दगा बाजरे है, दगा बाजरे। वैसे रणवीर सिंह की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि लाइक ऑलवेज रणवीर अपने आप को ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रखते हुए साइलेंस को चूज कर रहे हैं। बट मुद्दा तो ये है कि आपके चुप्पी साध लेने से क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? चलो माना कि धुरंधर इतनी बड़ी सक्सेस हो गई कि आपका मन हो रहा है कि आप अपनी फीस बढ़ा दे, बट यार पैसों के चक्कर में अपने क्राफ्ट से ना इंसाफी तो नहीं करना चाहिए ना? बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Burga, burga. La vida para la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: Good
4: morning. Sir, मैं actually आज सुबह वाले request करना चाहता हूँ. मैं तो आज सुबह आपसे वो singing, winging सिखाते हैं sir. तो sir गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो sir थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने.
3: हाँ सर कुछ गाके सुनाइए.
4: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है एनाकोंडा आपने एनाकोंडा फिल्म देखी है.
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह.
4: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
4: सर. वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया एनाकोंडा में यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात
4: मेरी बात
3: सुन पहले बात सुन.
4: हाँ सर
3: और इसे बंद करिए. बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है सर. बोलिए
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात है.
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे.
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका.

0: Ahora va. Ahora va.
1: It's Gunny.
2: Radio Mirchi, New York. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। अल्फा में आलिया का कैरेक्टर स्पाई का नहीं, बड़े एक असैसिन का होने वाला है, जो रेज होती है और बिल्ड की जाती है टू किल पीपल। सो YRF की फर्स्ट फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर मूवी की बात कर रही हूँ मैं, जो आदित्य चोपड़ा के स्पाई वर्स की अपकमिंग फिल्म है। एंड नाउ रिपोर्ट्स सजेस्ट कि इस मूवी में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होगा उसकी टोनैलिटी थोड़ी एंटी हीरो वाली होगी। Mind you, the movie also stars Sharwari, Bobby Deol and Anil Kapoor as the leads and is directed by Shiv Rawal, jo 10th of July ko release hogi. Diljit Dosanjh ne history create kar di hai ek baar phir se. So he has become the first Indian musician jinhone Madison Square Garden ke iconic venue ke ek nahi, do consecutive nights sold out kiye hain. Aur isi baat pe dil se aa raha hai, Punjabi aa gaye oye, puri duniya pe chha gaye oye. चलिए गोलमाल 5 की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में एक रीसेंट इंटरव्यू में तुषार कपूर ने कहा कि इसकी 80-90% ऑफ शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। माइंड यू, इस बार पहले के कास्ट मेंबर्स, दैट इज अजय देवगन, अर्शद वारसी, शर्मन जोशी, श्रेयस तालपड़े और कुणाल खेमू के अलावा अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली तुषार हैज मेंशन कि अक्षय के साथ उनकी जो एक्टिंग नजर आएगी इन द मूवी इज गोना बी द आइसिंग ऑन द केक फॉर हिज करियर इज वेल। खैर, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जिंदगी ने आपके साथ इतने सारे गेम खेले, अब आप जरा जिंदगी के साथ फन वाला गेम खेल लो यार।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हुआ आप, एंड नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची ऑफ द डे। सो जो लोग मेरे शो को सुनते हैं, दे ऑलरेडी नो कि आप मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजते हैं और मैं आपको कॉल करके ये बॉलीवुड गेम की शुरुआत करती हूँ। देर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिनके जवाब देने पे आपको ये मिर्ची फिल्मची का टैग मिलता है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी। कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आप मिर्ची फिल्मची बनने के लिए तैयार हैं आज?
2: कोशिश करते हैं।
0: क्या बात है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, अनन्या पांडे की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है?
2: स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू।
0: क्या बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में लोग रो यानी कि रोहन किसको बोलते हैं?
2: टाइगर श्रॉफ होगा।
0: टाइगर श्रॉफ की किस फिल्म में विसल बजा गाना है?
2: पहली वाली हीरो पंक्ति।
0: हीरो पंडी की फीमेल लीड का नाम क्या है?
2: कृति सैनन।
0: कृति सैनन का डबल रोल किस फिल्म में है?
2: डबल रोल ये काजोल के साथ आई थी।
0: हाँ, सही जा रहे हैं।
2: तीन पत्ती था क्या था?
0: तीन पत्ती तो नहीं था, लेकिन पत्ती से ही रिलेटेड था।
2: दो पत्ती।
0: हाँ, चलिए, दो पत्ती में पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनती है?
2: पुलिस इंस्पेक्टर काजोल।
0: हाँ, काजोल और शाहरुख खान किस फिल्म में बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं?
2: कुछ होता है
0: में टीना का रोल किसने प्ले किया है?
2: रानी
0: मुखर्जी की फिल्म जिसमें कार रेस होती है।
2: तारा रमपम।
0: हाँ, तारा रमपम के मेल लीड का नाम क्या है?
2: सैफ
0: अली खान लंगड़ा त्यागी किस फिल्म में बनते हैं?
2: ओमकारा
0: में नमक इश्क का सॉन्ग किस पे पिक्चराइज है? हाँ जी,
2: बिपाशा
0: बासु की फिल्म जिसमें ऐश्वर्या राय भी
2: है। मेरे ख्याल से
0: कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा जो गेम अभी तक खेला है आपने, उसके लिए ये टैग तो बनता है यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो ब्रो, आज के शो पे फर्स्ट मिर्ची फिल्मची तो दीपक जी हैं, लेकिन दीपक जी के आगे ये गेम कौन कंटिन्यू करेगा वो तो वक्त बताएगा। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके बस आपको अपना नंबर भेजना है, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. Mirchi, Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Mirchi, Mirchi.
2: खेलो मगर प्यार से.
3: श्रुति, श्रुति, श्रुति.
4: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
2: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ. आप कहाँ जा रहे हो? नाटी नाटी मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप. एंड यस, इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिल्म ची. सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है. मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन आई आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. अगर जवाब सही सही हुए तो आपको डेफिनेटली ये टैग मिल जाता है. तो सबसे पहले आज ये गेम हमारे साथ खेला है दीपक जी ने, बट वो एक पॉइंट पे अटक गए थे. बट आगे अब हमारे साथ गेम कम्प्लीट करने के लिए देयर इज दिस पर्सन. किससे बात हो रही है?
5: सौरभ से.
2: सौरभ जी कैसे हैं आप?
5: बस बढ़िया.
2: तो क्या आप ये गेम आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ?
5: कोशिश कर सकते हैं.
2: तो फिर सवाल यही है कि बिपाशा बासु की किस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी हैं उनके साथ?
5: धूम टू
2: में एसीपी कौन बनता है?
5: एसीपी वुड बी अभिषेक बच्चन.
2: अभिषेक बच्चन ने धीरू भाई का रोल किस फिल्म में किया है?
5: गुरु.
2: ग्रेट. गुरु की फीमेल लीड का नाम क्या है?
5: ऐश्वर्या राय.
2: ऐश्वर्या इश किस फिल्म में करती है?
5: ऐश्वर्या
2: देवदास फिल्म में चंद्रमुखी का रोल किसने किया है?
5: माधुरी दीक्षित.
2: माधुरी दीक्षित का घाघरा वाला सॉन्ग किस मूवी में है?
5: ये जवानी है दीवानी.
2: ये जवानी है दीवानी में नैना का रोल किसने किया है?
5: दीपिका पादुकोण.
2: दीपिका की मूवी जिसमें उन्हें लहू मुँह लग गया.
5: लहू तो लग गया, दैट वाज गोलियों की रासलीला.
2: रामलीला में मेल लीड रोल किसने किया है?
5: रणवीर सिंह.
2: रणवीर सिंह की एक मूवी जिसमें वो सारी लड़कियों को कॉन करते हैं.
5: लेडीज वर्सेज रिकी बेल.
2: लेडीज वर्सेज रिकी बेल में रणवीर सिंह को कौन कौन करता है?
5: अनुष्का शर्मा.
2: अनुष्का शर्मा को कैंसर किस फिल्म में होता है?
5: ए दिल है मुश्किल.
2: ए दिल है मुश्किल में शायरा कौन होती हैं?
5: ऐश्वर्या राय.
2: क्या बात है. तो इसी बात पे आपको भी ये टैग दे ही देते हैं यार.
0: मिर्ची फिल्मची.
2: भाई लोगों के अंदर के फिल्मची को ढूंढना अल्टीमेट लेवल का मजा दे रहा है मुझे. तो आपको कैसा लग रहा है वो मुझे जरूर बताना मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabala. Burga, burga. La viva la burga. Energy, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ शोरूम में ले जा, मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले।
3: ये सिर्फ 3
2: ऐसे करता
3: होगा। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: एक अम्बिशियस फीमेल कैरेक्टर को लव इंटरेस्ट में तब्दील करना जरूरी है क्या?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय। बात हो रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है कि वो एक मूवी तो बनाए लेकिन उसमें हर बार वर्चस्व रहे तो सिर्फ और सिर्फ मेल लीड का, फीमेल लीड को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब उसका पर्सोना तैयार किया जाता है अम्बिशन के साथ, आइडेंटिटी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी प्लॉट एकदम से घूम जाता है और वो हीरो की लव इंटरेस्ट बन के रह जाती है। बस कुछ ऐसी ही कैरेक्टर्स की लिस्ट निकाली है आज, जिसको डिस्कस कर रही हूँ इन माय पांच का पंच की लिस्ट, जहां सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म तू झूठी में मक्कार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म नमस्ते लंदन से कटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। हां जी, जैज का कैरेक्टर जिसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ की जाती है, उसके बाद उसको विलेन बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लंदन में जीना चाहती है। बट फिर अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, कटरीना को अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है एंड इवेंचुअली वो सारी चीजों को गिव अप करके पंजाब के एक गांव में जाके सेटल हो जाती है। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पे बात करते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की, फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी। हंजी, नैना तो याद होंगी आपको। जिस हिसाब से बनी बोले तो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एक प्रॉपर आर्क दिया गया था, उसके उड़ने दौड़ने गिरने सारी चीजों को अच्छे से विजुअलाइज किया गया था, वो क्या दीपिका पादुकोण के साथ नहीं हो सकता था? उसके एस्पिरेशंस नहीं थे, उसका फ्यूचर नहीं था, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। बट क्या ही कर सकते हैं, हिंदी फिल्म है भाई, यहां तो हीरो को ही वर्चस्व दिया जाएगा और हीरोइन को हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने वाली गुड़िया बनाया जाएगा। खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई मूवी ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिना हीरोइन के हीरो का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट नहीं हो सकता क्या?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: कसम से यार बाबू मोशाए, कभी कभी तो ऐसे ही ख्याल आते हैं क्योंकि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस चीज से प्यार है। मतलब अगर वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो उसको सस्टेन कर ही नहीं पाते ये, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मूवी उसके एम्बिशन, उसकी सारी इच्छाओं को साइडलाइन कर दिया जाता है और हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको हीरो का बस एक लव इंटरेस्ट बना के छोड़ दिया जाता है। आज कुछ ऐसी ही फीमेल कैरेक्टर्स की हो रही है बात थ्रू माय पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट तू झूठी में मकार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। नंबर दो पे हमने बात की नमस्ते लंदन से कैटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। नंबर तीन पे हमने बात की ये जवानी है दीवानी से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर चार पे बात करते हैं अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर के बारे में फ्रॉम द फिल्म जब तक है जॉन। क्योंकि भैया जब तक मैडम शाहरुख खान से प्यार में नहीं पड़ती हैं, बोले तो समर से प्यार में नहीं पड़ती हैं, तब तक अकीरा की जिंदगी बड़ी ही इंडिपेंडेंट सी, क्वर्की सी, फ्री स्पिरिटेड सी चल रही होती है। वो एक मस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होती है जिसको समर से जैसे ही प्यार होता है वो अपनी सारी चीजें भूल के समर के पर्सनल ग्रोथ के बारे में, उसके लॉन्ग लॉस्ट लव बोले तो कैटरीना कैफ से मिलाप कराने के बारे में सोचने लगती है। एंड दिस इज हाउ शी हैप्पीली एग्जिट्स द मूवी एज वेल। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बारे में, जो इनिशियली काफी कंपीटिंग होती है। हाँ जी, वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी होती है उसके लिए काफी जद्दोजहद करती है बंदी, बट जैसे ही उसको प्यार होता है वो कॉम्पिटिशन को अबैंडन कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती है कि भैया इन दोनों गाइस में से मेरे लिए कौन सा सही है। मतलब वाजंट इट आउटराइट स्टूपिड? केयर अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। अल्फा में आलिया का कैरेक्टर स्पाई का नहीं, बड़े एक असैसिन का होने वाला है, जो रेज होती है और बिल्ड की जाती है टू किल पीपल। सो YRF की फर्स्ट फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर मूवी की बात कर रही हूँ मैं, जो आदित्य चोपड़ा के स्पाई वर्स की अपकमिंग फिल्म है। एंड नाउ रिपोर्ट सजेस्ट कि इस मूवी में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होगा उसकी टोनैलिटी थोड़ी एंटी हीरो वाली होगी। Mind you, the movie also stars Sharwari, Bobby Deol and Anil Kapoor as the leads and is directed by Shiv Rawal, jo 10th of July ko release hogi. Diljit Dosanjh ne history create kar di hai ek baar phir se. So he has become the first Indian musician jinhone Madison Square Garden ke iconic venue ke ek nahi, do consecutive nights sold out kiye hain. और इसी बात पे दिल से आ रहा है, पंजाबी आ गए ओए, पूरी दुनिया पे छा गए ओए। चलिए गोलमाल 5 की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में एक रीसेंट इंटरव्यू में तुषार कपूर ने कहा कि इसकी 80-90% ऑफ शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। माइंड यू, इस बार पहले के कास्ट मेंबर्स दैट इज अजय देवगन, अर्शद वारसी, शर्मन जोशी, श्रेयस तालपड़े और कुणाल खेमू के अलावा अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली तुषार हैज मेंशन कि अक्षय के साथ उनकी जो एक्टिंग नजर आएगी इन द मूवी इज गोना बी द आइसिंग ऑन द केक फॉर हिज करियर इज वेल। खैर, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: más dumbre te dijo.
1: Mirchi.
2: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
3: ¿Aló?
4: ¿Aló? ¿Usted va a hacer más de trabajar? ¿Aló?
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
3: हाँ जी बोलो
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
3: हाँ जी देते
4: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाओ यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको
3: बता दो
4: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाता
3: है जी उठवा लेंगे उतना ही हम
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
3: किसको जी
4: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
3: क्या गिर गया
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
3: भाई साहब क्या उठवाना है
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
3: हाँ
4: सामान उठवा
3: क्या कर रहा है
4: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
3: उठवाना है
4: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं। टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाले किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपरहिट एल्बम का सुपरहिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत।
3: जचदा

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहेबान मेहरबान कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विथ अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उस उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा, लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR, और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स

0: खराब दो झरना कहीं तेरे दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हो बादशाह।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शारदा लेट्स डू

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़े कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana,
1: buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virtua la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसा कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपने गाने डीवीडी में या कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन.
3: हाँ सर.
2: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एक रियल वर्ल्ड वाइब ये होता है कि कभी मार्केट तो अपबीट होता है या कभी थोड़ा कॉशियस। हेडलाइंस तो चेंज होती रहती है, पॉलिसीज शिफ्ट होती रहती है, और इकोनॉमिक्स का मूड कभी क्लियर स्काई, कभी क्लाउडी तो कभी स्नो। ऐसे मिक्स मार्केट में ना लोग भी पॉज ले लेते हैं, सोचते हैं कि क्या यही सही टाइम है घर खरीदने का, वेट करें या मूव करें। पर हर चेंजिंग इकोनॉमी के बीच अपॉर्चुनिटीज भी क्वाइटली शेप हो रही होती है। स्मार्ट डिसीजंस पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं, और इसी क्लैरिटी के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: Authentic, original, and better than our rivals.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अगर फलों में किसी को अवार्ड देना हो ना तो इस एक फ्रूट को जरूर मिलना चाहिए। शम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए ना, जहाँ इतने सारे फल हैं, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, वह हर इंसान का दोस्त अगर कोई एक फ्रूट है तो वो है बनाना। अब जाहिर सी बात है, बनाना हर स्टोर में ईजिली अवेलेबल होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, कुछ नखरे नहीं, जैसे कि ना काटना पड़ता है ऑरेंज की तरह, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अनार की तरह, बस उठा लो, पील करो और खा लो। और अगर ऐसे सीधा साधा नहीं पसंद तो स्मूदी बना लो, डेजर्ट बना लो, या मेरे फेवरेट डीप लॉन्ग बनाना चिप्स फॉर्म में खा लो। और एक नहीं, उसमें भी तीन तीन वैरायटी, प्लेन चिप्स, ब्लैक पेपर चिप्स एंड रेड चिली चिप्स। तो हर फॉर्म में आपको मिलेगा 100% नेचुरल क्रिस्पी बनाना चिप। और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो अपने नज़दीकी इंडियन स्टोर से ले आइए हेल्दी एंड क्रिस्पी दीप बनाना चिप्स। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको बनाना का ये अंदाज पसंद आया या नहीं। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें अब पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Milci, burka. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
1: समाचार
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद लेना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
1: नहीं नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वेदर इज गेटिंग वार्मर, लेकिन यार ये तो एक बहुत ही राहत की बात है ही, उसी के साथ साथ हमारे गोल्डन आवर में भी एक राहत की बात आने वाली है, और वो क्या होने वाली है चलिए पूछते हैं हमारे गोल्ड डिकोडर सीरीज में हमारे गोल्ड एक्सपर्ट से, बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। नमस्ते बॉबी जी, वेलकम टू दिस वंडरफुल इवनिंग।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी and a warm beautiful evening to everyone. सिद्धि जी, मैं आपको पहले बता दूं, आज की खुशखबरी ये है कि गोल्ड के प्राइजेस $4,500 का प्राइस ब्रेक करके $4,450 $4,450 पर ट्राई ऑन ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, और पिछले कई महीनों की अगर बात की जाए तो गोल्ड वाकई ही एक ड्रॉप पे है और एंट्री पॉइंट बनती है। जिन दोस्तों ने मेमोरियल डे की सेल एंजॉय नहीं की उनको गोल्ड प्राइस ड्रिप के साथ एक एंट्री पॉइंट बनता है, तो राज ज्वेल्स के साथ आइए। प्रीमियम गोल्ड बार जैसे पैम के, सोने के हों या चांदी के, सिल्वर और गोल्ड अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। सिद्धि जी, मैं तैयार हूँ आपके क्वेश्चन के लिए।
0: देखिए बॉबी जी, वैसे तो आपने अब भी जब बताया कि गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप हो चुके हैं, और एक बहुत ही अमेजिंग बात होती है न्यू जर्सी की या फिर एनआरआईज की, कि एक तो पूरे यूएस में आप शिपिंग प्रोवाइड करते हो, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात जो ये है कि यहाँ पर दो दो फेस्टिविटीज साथ में सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। मतलब ऐसे जब जैसे मेमोरियल डे है उसमें सेल्स तो मिलते ही है, उसी के साथ साथ कभी कोई इंडियन फेस्टिवल होता है उसमें भी हमारा बोलते ना वो डबल धमाका हो जाता है। तो उसी के लिए आप जिन्होंने भी मेमोरियल डे सेल या ऑफर्स मिस किए हैं उनके लिए क्या स्पेशल ऑफर है, क्या वो अभी भी जारी है, प्लीज हमें बताइए।
1: देखिए, मैं तो सब दोस्तों को एक ही बात कहता हूँ जो दूर से आते हैं, क्योंकि लिटिल इंडिया ओपन रोड ना, हम सारे दोस्तों का पराया बसाया हुआ एक प्यारा सा छोटा सा इंडिया है
0: जी।
1: और सिद्धि जी, हमारा तो एक ही वादा रहता है। देखिए, आज जैसे गोल्ड के प्राइस गिरे हैं ना, तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ जिस दिन आपको बनानी हो आप शॉपिंग करने आ जाना, हम आपके लिए धनतेरस और दिवाली उस दिन सेलिब्रेट कर देंगे। सो ये सिर्फ एक बहाना होता है, मुझे लगता है कि डील्स एंड ऑफर्स ये एक छोटा सा इंसेंटिव होते हैं। असली इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो गोल्ड का प्राइस होता है। आज सबसे अच्छी डील ये है कि जो गोल्ड का प्राइस है वो अबाउट $50 पर ट्राई अउंस ड्रॉप करा है कल से। So, मुझे लगता है वो इटसेल्फ इज अ बिग इंसेंटिव फॉर पीपल टू कम एंड बाय एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड। और बाकी सिद्धि जी, जैसा मैंने आपको बोला, जब आपका दिल करे आइएगा राज ज्वेल्स में, हम दिवाली मनाते हुए आपकी मेमोरीज में मेमोरियल डे को भी यादगार के रूप में मना देंगे। सो दोस्तों को राइट क्वालिटी राइट प्राइस के साथ अगर ऑफर की जाए तो एवरी डे मेमोरियल डे है। सो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं लाइफ के पेजेस पर rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: क्या बात है बॉबी जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज़ माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था। और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है। ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ। टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: का कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओ हो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज फ्रॉम मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने, और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में, और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस ज़बरदस्त डुओ ने, विच इज़ मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओज के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए, विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हेलो,
2: उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
1: कहाँ भिजवाना
2: है मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
1: सामान
2: उठवा। तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी यहाँ पे बातें हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया।

दोस्तों, बॉलीवुड का ना एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, थिएटर्स वापस फुल हो रहे हैं, पर ऑडियंस बदल चुकी है। अब लोग हर फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं जाते, सिर्फ उन फिल्म्स के लिए जाते हैं जो एक्सपीरियंस देती है। जैसे जब कोई बिग स्केल एक्शन या विजुअल स्पेक्टेकल आता है ना, तब लोग बोलते हैं कि यार इस मूवी को तो थिएटर में ही देखना चाहिए। लेकिन बाकी कॉन्टेंट OTT पे इक्वली स्ट्रांग चल रहा है। मतलब बॉलीवुड अब दो ट्रैक्स पर चल रहा है, इवेंट सिनेमा और इंटीमेट स्टोरी टेलिंग। तो आप भी बताओ दोस्तों कि आप थिएटर जाने के लिए क्या चूज करते हो, स्टोरी या स्केल? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

1 महीना, सिर्फ 1 महीना भी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज बात करते हैं नई बिगिनिंग्स की। कभी सोचा है कि एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको एक बड़ा करियर दे सकती है? जी हाँ, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस, हाँ वही लोग जो हॉस्पिटल्स में हर दिन केयर का पहला कदम होते हैं। AIMS एजुकेशन में सिर्फ 1 मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप भी बन जाते हो हेल्थ केयर फील्ड के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। ऑनलाइन और कैंपस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूएबल भी। तो अगर आप भी एक सेफ, केयरिंग और सिक्योर प्रोफेशन चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu और डिस्कवर कीजिए वो एक सिप ऑफ चेंज जो आपकी जिंदगी में केयर और ग्रोथ दोनों लाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये आइकॉनिक लाइन मैंने प्यार किया की भी थी। और ऑल्सो मैं उस दिन वेन हैरी मेट साली देख रही थी और उसमें हैरी इज टेलिंग साली कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो शी सेज क्या बात कर रहा है। टू विच ही सेज कि इन दोनों लोगों में से, एक लड़के और लड़की में से, वन ऑफ देम विल हैव फीलिंग्स ऑफ इंटीमेसी अबाउट द अदर पर्सन, और वहीं दोस्ती एक नया मोड़ ले लेती है। अब माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपको भी यही लगता है कि अगर एक दोस्ती में एक लड़का और लड़की दोस्त हैं भी, तो भी एट सम पॉइंट वन ऑफ देम विल स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन, हाँ या ना? एंड टू टेल मी द आंसर टू दैट वन, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana, burca, burca, la vizba la burca. Milci, burca!
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: है। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।